FM बैंड 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक्षम 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि तदनुसार 11 अगस्त 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातः

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र

0: छात्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें, समेकित कीट प्रबंधन आलेख में वाचन प्रतिमा वर्मा से।
3: कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में बातें समेकित कीट प्रबंधन की। जी हाँ किसान भाइयों, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों और आधुनिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी भरपूर व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पर्यावरण का दूषित होना, खाद्य पदार्थों में रासायनिक कीटनाशक का अवशेष पाया जाना और गौण कीटों का प्रमुख कीड़ों का रूप लेना। किसान भाइयों, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रासायनिक कीटनाशी के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। फलतः पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और किसानों को हानि उठाना पड़ रहा है। इसलिए टिकाऊ खेती के लिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी बना रहे, और इसके लिए समेकित कीट प्रबंधन कर आर्थिक लाभ को बनाए रखा जा सकता है। समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत अंगीकृत की जाने वाली जो उन्नत तकनीक है वो हम आपको बता दें। सबसे पहला कृषि कार्यगत नियंत्रण की हम बात करते हैं। इस पद्धति में किसानों द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्यों जैसे खेतों की गहरी जुताई, खरपतवार को नष्ट करना, खेतों में सड़ा हुआ गोबर, कंपोस्ट एवं करंज की खली का व्यवहार

0: करना, अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग करना, समेकित उर्वरक का प्रयोग करना, स्वस्थ एवं उपचारित बीजों का व्यवहार करना, सिंचाई का प्रबंध करना, फसलों की उचित समय पर बुआई और कटाई। इन तरीकों को अपनाने से लागत में किसी तरह से वृद्धि भी नहीं होती है, इसलिए किसानों को समेकित कीट प्रबंधन से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जैविक नियंत्रण की बात करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली में कीड़ों का नियंत्रण उनके प्राकृतिक शत्रुओं के द्वारा स्वतः ही होते रहते हैं, पर विकट परिस्थिति में कीड़ों की संख्या अधिक होने पर परजीवी और परभक्षी कीड़ों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ता है ताकि दुश्मन कीड़ों की संख्या को कम किया जा सके। इसलिए जैविक नियंत्रण कार्यक्रम में परजीवी और परभक्षी कीड़ों के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, अब बातें घरेलू कीटनाशकों के प्रयोग की। घर में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर कीड़ों की संख्या को आप कम कर सकते हैं। इनके प्रयोग से लागत में कमी होती है और पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाने के तरीके में आप एक बाल्टी लें और नीम की पत्तियों से उसे भर दें और उसको पानी में डुबोकर 4 दिन के लिए छोड़ दें। 5वें दिन नीम की पत्तियों को छांटकर मिश्रण तैयार कर लें और घोल को छानकर थोड़ा सा साबुन का घोल मिलाएं, उसके बाद छिड़काव करें। इसके कारण बहुत सी कीड़ों की संख्या कम हो जाती है। नीम के बीज से कीटनाशी बनाने के लिए आप 1 किलोग्राम नीम के बीज को धूल में परिवर्तित कर लें। धूल को 20 लीटर पानी में मिलाकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दें। सुबह अच्छी तरह मिलाकर छान लें। छानने के बाद घोल में 30 ग्राम साबुन का घोल मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। नीम के बीज से निर्मित कीटनाशी अधिक प्रभावशाली होता है और अनेक प्रकार के कीड़ों के नियंत्रण में सक्षम भी होता है। हरा तीता मिर्चा और लहसुन की कीटनाशी भी आप बना सकते हैं। इसमें आप 3 किलोग्राम हरा तीता मिर्चा ले लें। मिर्चों के डंठल को हटाकर पीसकर 10 लीटर पानी में डुबोकर रात भर के लिए छोड़ दें। दूसरे बर्तन में 1/2 किलोग्राम लहसुन को कूचकर 250 मिलीलीटर किरासन तेल में डुबोकर रात भर छोड़ दें। सुबह में दोनों घोल को अच्छी तरह मिलाकर छान लें। 1 लीटर पानी में 75 ग्राम साबुन का घोल बनाकर घोल को एक साथ मिला दें। 2-2.5 घंटा स्थिर होने के बाद घोल को आप फिर छान लें। इस घोल में 70 लीटर पानी मिलाने के बाद फसलों पर छिड़काव करें। यह कीटनाशी गोभी की कीड़ों के अलावा अन्य फसलों में लगने वाले पिल्लू को भी नियंत्रित करता है। कीटनाशक रसायनों का प्रयोग अगर करना हो किसान भाइयों, तो आवश्यकता होने पर ही सुरक्षित कीटनाशक का व्यवहार उचित समय और उचित मात्रा में करें। प्रचलित कीटनाशक रसायनों के नियंत्रण के मुकाबले समेकित कीट प्रबंधन से कई लाभ देखे गए हैं, जैसे यह एक टिकाऊ और प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों पर आश्रित होने का लाभदायक है। यह पर्यावरण को शुद्ध करने में मददगार होता है, मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, कीड़ों में रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम करने में सहायक होता है, मित्र कीट और लाभदायक जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। वास्तव में किसान भाइयों, इस प्रकार समेकित कीट प्रबंधन अपनाकर हम अपनी भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रख सकते हैं, साथ ही गुणवत्ता वाली फसल को उत्पादित कर बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, प्रतिमा वर्मा से। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
2: नंबर 234,

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ।

स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोर नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संगी साथ, बढ़िया सिउ किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा, ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाय के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं, तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहाँ जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान हैं। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच।

जो सोची लाख वार छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता रोखिया पुख न उतरी जे बनिया पुरिया पार सहास्या पा लाख वह है ता एक न चले नाल केवे सचियारा होइए केवे कूड़े टूटते पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिए नाल।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन अनुपमा तिवारी से। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं आराधना हरिओम शरण की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ में आराधना। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, युवाओं में बढ़ता कम काम का तनाव और उपचार। भेंट वार्ताकार डॉक्टर सुरजीत प्रसाद।

0: मित्रों, आजकल देखा जा रहा है कि काम के प्रति लोगों में काफ़ी तनाव दिख रहा है। चाहे हमारे युवा साथी नौकरी कर रहे हों, व्यवसायिक जगत में हों, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं, उनमें काम के प्रति काफ़ी तनाव है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, और फिर वो अपने आप को तनाव से घिर जाते हैं, और जब तनाव होता है तो फिर अवसाद से वो घिरने लग जाते हैं। आखिर हमारे युवाओं में इस तरह का तनाव क्यों हो रहा है, क्यों उतने काम के प्रति वो तनाव से घिर जाते हैं, और जब ज़्यादा तनाव होने लगता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां भी अंदर आने लगती हैं। तो युवाओं में इतना तनाव क्यों पैदा हो जा रहा है, और इससे बचने का कौन से उपाय है? क्या हमारी जीवन शैली प्रभावित कर रही है, या हमारा खान पान बिगड़ गया है, या हमारा सोचने के तरीके में परिवर्तन आ गया है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है, और हमारे युवा साथी भी इससे अछूते नहीं हैं। काम काम काम, दिन भर वो काम के प्रति वो लगे रहते हैं, चाहे सुबह हो या दोपहर हो या शाम, और ये काम उन्हें तनाव बढ़ा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा?
1: युवाओं में आजकल ये देखा गया है कि स्ट्रेस बहुत ही बढ़ रहा है। जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ ये तनाव काफ़ी बढ़ रहा है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कारण जो हैं, ऐसे तो बहुत कारण होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक बैलेंस जो होना चाहिए काम और अपने पर्सनल लाइफ का, वो एक नहीं रख पाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है कि उनको जो काम कर रहे हैं उनको वर्कलोड बहुत मिल रहा है, ज़्यादा वर्कलोड मिल रहा है, समय कम है, वो एक हो सकता है कारण। तीसरा कि एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वो कैसा है। अगर वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट हम लोग कहते हैं, अगर टॉक्सिक है तो उसमें उनकी एफिकेसी भी नहीं बढ़ पाती है, और काम का लोड वैसा ही है तो फिर अगेन तनाव हो जाती है। उसके अलावा कुछ कुछ है, जैसे लोगों में आजकल के युवाओं में स्पेशली ये देखा गया है कि एक आगे बढ़ने की इच्छा, किसी भी कीमत पे अचीव करने की इच्छा, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें समझना होगा कि सब लोग सब कुछ नहीं पा सकते हैं। अपनी लिमिटेशन हमें जाननी होगी, हम एक हद तक ट्राई करें, अगर वो ट्राई करने में कमी ना करें लेकिन इतना भी ट्राई ना करें कि वो हमारा मेंटल हेल्थ उससे हैम्पर हो जाए, तो वो हमें एक पहचानना होगा कि हमारी लिमिटेशन कहाँ तक है, हम कहाँ तक अचीव कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाएगा। दिनचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी तनाव है वो हमारे अच्छी दिनचर्या से वो एटलीस्ट 50-60% कम हो सकता है। अच्छी दिनचर्या जैसे अच्छी नींद लेना, नींद लेने पे जो भी आपकी टेंशन या तनाव है वो लगभग 50% आपका कम जाएगा, 50-60%। कुछ हल्का एक्सरसाइज करना, सही खान पान और सही समय पे लेना, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम रेगुलर उस पालन नियमित रूप से करें तो स्ट्रेस में हमें बहुत कमी रहेगी, और उसके साथ अगर फिर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको है तो आपको फिर किसी पेशेवर से मिलने की ज़रूरत है।
0: क्योंकि काम का बोझ हमारे युवा साथी में इतना है कि वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, और सोने उठने बैठने जागने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ गया है, और खान पान हमारा बिगड़ गया है, और इसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ गई है, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को खोखला करता जा रहा है। क्योंकि युवा साथी हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, और जब युवा इस तरह के गर्त में जाएंगे तो फिर देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो युवा साथी कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें?

0: तो हमेशा लगा रहेगा। और ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा, मंजिल पे जाना, यदि हम सपना ज़्यादा देखते हैं और जब हमारे सपने साकार नहीं होते हैं तो फिर हम अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगते हैं।
1: युवा साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत

0: समय फिर ये चीज़ें बहुत ही मैटर करेगी। तो अगर शुरू से ही वो इस चीज़ को बना के चले कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना है, तो वो बहुत उनके लिए लाभदायक है। फॉर एग्जांपल, जैसे काम ठीक है, बहुत वर्कलोड है, दैट इज़ ओके, बट वो वर्कलोड आप घर लेके ना जाएं, बिस्तर पे सोने समय वो वर्कलोड ना ले जाएं। आप ऑफिस छोड़े, बस वर्कलोड वहीं पे छोड़िए, फिर अगले दिन ऑफिस आइए, फिर उसको स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ हो सकता है स्मार्ट वर्क करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एक काम 5 मिनट में कर सकता है, कोई वही काम को करने में 2 घंटे लगाता है, तो हम कैसे स्मार्टली, कैसे कम टाइम में उसको कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ हम लोग कहते हैं नो कहना। नो मतलब असर्टिवनेस ट्रेनिंग कहते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में नो कहना, सही समय पे किस रूप में नो कहें। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत वर्कलोड आपके बॉस दिए जा रहे हैं आपको, तो आपको ना कहना आना पड़ेगा, उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा किसी भी तरीके से कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि चुप हो गए और चुप होके जितना काम दे रहे हैं हम लेते जा रहे हैं, उससे आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हैम्पर होगा, बॉस का नहीं। तो एक नो कहने का भी हमें वो सीखना होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल देखा गया है कि इन चीज़ों के कारण युवा, जैसा आपने बताया, नशे की ओर बहुत अग्रसित हो रहे हैं। तो नशा करना इसका उपाय नहीं है, उससे और आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब ही होगा। इसके अलावा जो दिनचर्या है उसे बहुत ही संतुलित रख सकते हैं। सही समय पे सोना, भरपूर नींद लेना, सही समय पे खाना और न्यूट्रिशियस फूड लेना, जो स्वास्थ्यवर्धक खाने वो जितना हो सके नेचुरल चीज़ें आप खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए सुबह शाम घूमें और आपस में बातचीत करें। बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द फैक्ट कि अगर आप ऑफिस में हैं, आपको किसी तरह का तनाव हो रहा है, अगर आपके साथी संगति वाले लोग हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका तनाव बहुत हद तक कम रहा है। इसके साथ साथ कुछ कुछ जिम्मेदारियाँ तो मेरे ख्याल से ऑफिस या जो एम्प्लॉयर है उनकी भी बनती हैं कि वो ऐसा माहौल तैयार करें जो उनके जो एम्प्लॉई हैं वो लोग करने में, उस माहौल में उनको काम करने में ज़्यादा दिक्कत की परेशानी ना हो।
1: जी डॉक्टर साहब, जमाना मेटरलिस्टिक हो गया है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमारे युवा साथी भी पैसा अधिक कमाना चाहते हैं और फिर पैसे कमाने के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और इसका विपरीत प्रभाव उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो क्या कहेंगे, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है?
0: नहीं, मैं तो कहूँगा हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो पैसा है, पैसा से हेल्थ आप नहीं खरीद सकते लेकिन हेल्थ से आप पैसा खरीद सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये पुरानी कहावत है, वो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, पैसा रहेगा हेल्थ नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं पास्ट में कोट करूँ तो दीपिका पादुकोण बहुत ही फेमस एक्टर थी, लेकिन जैसे ही उनको डिप्रेशन हुआ, जो सबको पता है, तो उसके बाद वो कहाँ उसको एंजॉय कर पाई वो लाइफ को। शी वॉज स्ट्रगलिंग विथ, वो डिप्रेशन से स्ट्रगल की हैं, तब उन्होंने फाइट बैक किया है, उन्होंने पेशेवर की मदद ली, फिर वो वापस आए हैं। तो अब उन्होंने फिर उनसे उसने सीखा है उन्होंने कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना, अपना मेंटल हेल्थ कैसे प्रायोरिटाइज करना। इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जस्ट मुझे एक याद आया कि इतना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस बार की जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम भी यही था कि लेट्स प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। रिलेटेड है इस चीज़, मतलब युवाओं से थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सरकार के साथ साथ जो एम्प्लॉयर है उनके साथ साथ अपनी पर्सनल जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कैसे अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं।
1: ऑफिस के कार्य, दफ्तर के कार्य या आप कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के कार्य को आप घर रहकर नहीं है, यदि आप दोनों को मिक्सअप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। खुश रहना भी एक कला है, खुश कैसे रहें और काम को हम किस प्रकार व्यवस्थित करें, और जैसा आपने बताया स्मार्ट वर्क,
0: मैं कहूँगा जैसे मैंने बताया स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुशी किन किन चीज़ों में है, मटेरियलिस्टिक खुशी है कि आपको खुशी मिलती है नेचर में, संगीत में, ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो इननेट है वो सब में रहती है।
2: अभी आप सुन रहे थे युवाओं में बढ़ता काम का तनाव है उपचार,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर सही गुणवत्ता के सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। स्वास्थ्य चर्चा

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफ एम 103 मेगाहर्ट्ज़ पे। आइए आपको बताते हैं प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पुलों में यानी 7:15 पर आप सुनेंगे राग रंग। सुगम संगीत का समय होगा 7:45 पर। समाचार प्रभात आप दिल्ली से सुनेंगे 8:00। 8:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 8:30 पर रांची से। 8:40 पर आप सुनेंगे रांची से विज्ञापन। 8:45 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। जोहार पलामू का समय होगा 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रीत भारती में आप सुनेंगे सेहतनामा। 10:10 पर मुंबई से। 11:00 का समय होगा मुंबई से विविध भारती का। 12:00 आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में यादों की महफिल। 1:00 का समय होगा दिल्ली से हिंदी में समाचार का। 1:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सुनहरा सफर। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 2:00। 2:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली और मुंबई से हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में। सदा बहार नगमे आप सुनेंगे विविध भारती से 2:30 पर। 2:55 पर हम चलेंगे रांची जहां सब सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3:00 का समय होगा विविध भारती का जिसमें आप सुनेंगे सखी सहेली। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 4:00। 4:02 पर हम चलेंगे मुंबई जहां सब सुनेंगे विविध भारती। 5:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। विविध भारती में आप सुनेंगे छाया गीत 5:02 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का समय होगा शाम 5:35 पर। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। 6:02 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम में किसान वाणी। ग्रामीण सभा का समय होगा शाम 6:30 पर। 7 बजे का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 7:10 पर सुनेंगे रांची से जिले में आजकल। विधानसभा समीक्षा का समय होगा 7:15 पर, जो आप रांची से सुनेंगे। एक रंग का समय होगा 7:20 पर। 7:45 पर सुनेंगे खुला आकाश के तहत काव्य पाठ। रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से संसद समीक्षा। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। देश गान का समय होगा 8:30 पर। 8:45 पर हम चलेंगे दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9 बजे। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार। 10 बजे का समय होगा दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल। 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 11:05 पर। और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं राग रंग पंडित सी आर व्यास से।

अभी आप सुन रहे थे राग रंग शास्त्रीय संगीत गायन पंडित सीआर व्यास से। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत अशोक खोसला से।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1441।

0: फेसबुक कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
2: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
3: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
4: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र

0: प्रसाद महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
5: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर एफआईएच

0: हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes taxation and other laws amendment bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीडर देवेंद्र नाथ महतो हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा और आजसू का आज झारखंड बंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने का दिया भरोसा, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। लातेहार से पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, दलमा के जंगलों से हथियारों का जखीरा बरामद और आज चाईबासा में होगा माओवादियों का आत्मसमर्पण। रांची मौसम केंद्र ने आज राजधानी रांची सहित राज्य के 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की जताई आशंका, अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित डोरंड कप फुटबॉल में एससी दिल्ली की धमाकेदार जीत, भारतीय वायुसेना को 7-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर कल राजधानी रांची में करीब 10 घंटे तक छात्रों का जोरदार आंदोलन चला। विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज भाजपा का राज्यव्यापी बंद जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजधानी रांची की सड़कें कल शाम उस वक्त अखाड़ा बन गईं जब विधानसभा घेराव के बाद छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। दिन भर विधानसभा के बाहर जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा। शाम को प्रदर्शन समाप्त होने के बाद लौट रहे छात्रों की पुलिस से भिड़ंत हुई। कथित पत्थरबाजी और नारेबाजी के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। भगदड़ और लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने की सूचना है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की भी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद रांची जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्रशासन वीडियो फुटेज खंगाल रहा है ताकि प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
2: जितने भी छात्र इसमें आंदोलनरत थे उन्होंने अपना संयमता का परिचय दिया। पुलिस भी विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए और किसी तरह का कोई भी दुर्घटना न हो उसको बनाने के लिए उन्होंने अपना कम से कम बल का प्रयोग किया और असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने उकसाने को प्रयास किया। अनुरोध है कि उनको चिन्हित करें और पुलिस भी उनको चिन्हित करने की आगे की कार्रवाई करेगी।
1: घटना के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। बंद सुबह 8 बजे से प्रभावी रहेगा। हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ सावन के मद्देनजर देवघर जाने वाले कांवरियों को बंद से मुक्त रखा गया है। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो आज रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में धरने पर बैठेंगे।
3: भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो जो अन्य सेवाएं हैं, सारी सेवाएं बंदी से प्रभावित नहीं होंगी। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ वैसे लोगों को सहयोग करने का काम करें।
1: इधर चौतरफा घिरी हेमंत सोरेन सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीतिक साजिशों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अब नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद छात्रों का आंदोलन किस दिशा में जाता है और आज का झारखंड बंद सरकार के लिए क्या नई चुनौती लेकर आता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा छात्रों के वास्तविक मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है और अपने फायदे के लिए युवाओं के आंदोलन को भटकाने की कोशिश में जुटी है।
4: भाजपा की क्या भूमिका है, किस तरीके से छात्रों के मुद्दों को विषय से भटकाने के लिए उसका राजनीतिकरण किया गया है और राजनीति की वजह से छात्रों का जो मेन मुद्दा है या उनके कॉज है वो किसी तरह से प्रभावित न हो, राज्य सरकार की यही मंशा है। और छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोगों के समाधान के लिए सरकार तैयार है।
0: झारखंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राज्य सरकार ने जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। इसके तहत पलामू में राधा कृष्ण किशोर

और दीपक बिरवा, जबकि जामताड़ा में इरफान अंसारी तिरंगा फहराएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने मुख्य प्रवेश द्वार और लिटिगेंट शेड की आधारशिला रखी। साथ ही पार्किंग शेड और कोर्ट रूम में माइक साउंड सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए अदालतों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं होना बेहद जरूरी है।
3: लिटिगेंट सिटिंग का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद लॉयर्स का पार्किंग शेड ये भी इनॉग्रेट हुआ। साथ में हमारे यहाँ माइक्रोफोन लगाया गया जिससे आर्गुमेंट में क्लियरिटी रहेगा। उसके बाद मेन गेट का सेंटर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए तो उसका भी इनॉग्रेशन हुआ। तो ये सारे समझिए कि अल्टीमेटली लिटिगेंट के हेल्प के लिए हुआ है।
2: राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान जारी है। लातेहार पुलिस ने कस्तूरबा विद्यालय के संवेदक से लेवी वसूलने की हिंसक योजना को नाकाम करते हुए पीएलएफआई नक्सली लालदेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सरायकेला के सिकम्बरा और दलमा जंगलों से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, राइफलें और आईईडी बरामद की गई हैं। इस बीच सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण आज चाईबासा पुलिस केंद्र में एक महिला उग्रवादी सहित कई अन्य माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने आज राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए 135वें डूरंड कप फुटबॉल मुकाबले में एससी दिल्ली ने भारतीय वायुसेना को 7-1 से हरा दिया है। इस शानदार जीत के साथ एससी दिल्ली ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और 9 अंकों के साथ ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विधानसभा पर छात्र सैलाब, रण क्षेत्र बनी रांची। प्रभात खबर की सुर्खी है, परीक्षा घोटाले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष खियांगते को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। दैनिक जागरण लिखता है, सीएम ने की छात्रों से शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च की सराहना, कहा उनकी आवाज का सम्मान करेगी सरकार। हिंदुस्तान के शब्द हैं, लाल किले से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य,

नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म दिल तुझको दिया का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुली का ये गाना शाबीर की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं गीत गुंजन। कार्यक्रम के अंत में ये सुनाते हैं हम आपको फिल्म रफू चक्कर का ये गाना, उषा मंगेशकर की आवाज़ में, गीत गुलशन बावरा के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: कह दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जो हर प्लामों में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और करते हैं आज का सुविचार, जो सुविचार इस प्रकार से है। कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक है, हर अनुभव कुछ सिखलाता है। बड़ा सोचो, बड़ा करो। सफलता विचार से शुरू होता है, गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। असफलता से भी सीखो और दूसरे के लिए वही करो जो तुम चाहते हो, यही सच्चा मानवतावादी है। तो इसी सुविचार के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलम। वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 26 डिग्री। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से सचेत रहेंगे। प्रकृति ने हमें सब चीज़ दिया है और प्रकृति से हम हर चीज़ पाते भी हैं। प्रकृति के अनुसार उनके जो मौसम है उनके अनुसार खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें, फल फूल सब्जियाँ सारे चीज़ मिलती है। तो उन्हीं सब फलों में आज हम बातें करते हैं अमरूद की, जो हर घर में पाए जाने वाले ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत शौक से लोग अपने घरों में लगाते हैं। और अमरूद एक ऐसा फल है जो बड़ी आसानी से लग भी जाता है और देखा जाए तो सस्ता फल है, मगर इसके जो गुण हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इनके गुणों के वजह से हम इनको एक अच्छा फल के रूप में जानते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अमरूद एक बहुत ही गुणकारी फल है। इसमें विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। यह पाचन को सुधारता है और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात कि ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है और दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। कहते हैं फाइबर पेट साफ रखता है और कब्ज से ये दूर रखता है। इम्यूनिटी विटामिन सी होने की वजह से शरीर की ताकत को बढ़ाता है, बीमारियों से हमें बचाता है। इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम होता है, जो शुगर कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि अमरूद जो है बहुत ही सस्ता फल है, जो बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल भी जाते हैं और ये मौसम के अनुसार तो मिलते ही हैं। इन्हें हम अगर अपने घरों में इनका पेड़ लगाएं तो हम एक अच्छे फल के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहेंगे और एक शुद्ध वातावरण भी हमारे घर का बना रहेगा। तो अभी जैसा मौसम है, यानी कि बरसात के दिनों में आप अगर चाहें तो अमरूद के जो पेड़ हैं उसे हम आप अपने घरों में लगा सकते हैं और एक अच्छा फल पा सकते हैं। तो हम कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाएंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पिलामू, प्रस्तुति स्वर्था पिंकी कुमारिका और संयोजक थे प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
3: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
3: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
3: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
3: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
3: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
2: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया।

0: गया था।
1: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
0: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
1: श्रोताओ, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
0: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहस पूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
1: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
0: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
5: रॉलेट एक्ट वापस लो,
6: रॉलेट एक्ट
5: वापस लो।

0: नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: माताजी
1: जय।
0: भारत माताजी।
2: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, की चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
3: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 13, 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
4: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
4: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
5: हमारी मांगे पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।

0: सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है। सभा सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
1: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
2: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
3: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
2: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।

मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: masumların lapsi de kırdı masi.
1: Baba.
0: Masi, masumların lapsi de kırdı.
1: Agar niye, agar niye? Ella. Ay, Ella, love. Ay, ni puta, ¿dónde está love y love?
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले।

0: पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
1: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डार।
3: यस सर।
2: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नहीं दी?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
3: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
1: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय, निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह

0: जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छः एक कम छः,
3: छः दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छः तीन अठारह।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं? क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा? मैं खेलूं भी, पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ, तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा, अब रो।
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति, प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल विधेयक पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
7: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है।

0: लिए इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर श्री महतो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कांवड़ मेले के 12वें दिन कल 63,60,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है। मुख्य रूप से डाक कांवड़ियों की आवाजाही से शहर शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रमुख स्थान घाटों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बहुत तेज वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The NDA Parliamentary Party's weekly meeting Mangal Milan is underway at the Parliament House premises in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and other NDA leaders waved Tiranga during the meeting. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital

0: payment system will remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
1: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
0: The Jharkhand student agitation over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations continued for nearly 10 hours yesterday. The BJP has called for a statewide bandh today against police action during yesterday's Assembly Gherao. The Assembly Gherao, which continued for nearly 10 hours yesterday, saw protesters reaching the vicinity of gate number 1. Police used water cannons, tear gas and lathi charge to clear the area. Student protest leader Devendranath Mahato, who has been on a hunger strike for the past 9 days, was admitted to Ranchi's Sadar Hospital after his health deteriorated during the Assembly protest. The government has notified 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. The Home Ministry said that it includes 9 land ports and 2 airports. This includes airports at Bhopal and Tirupati and land ports at Atari and Agartala. The Ministry said that the addition of ports further enhances the attractiveness and utility of electronic visa. The death toll from a magnitude 7.4 earthquake that struck Western Colombia has risen to 132, with more than 570 others injured. According to the U.S. Geological Survey, the earthquake struck on yesterday with its epicenter near San Jose del Palmar in Choco region, about 400 kilometers west of the capital, Bogota. India has made a strong start at the Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, winning 17 medals including 4 gold on the opening day. The Indian contingent has secured 4 gold, 4 silver and 9 bronze medals at the championship, which began on Sunday and will conclude on August 14. And that is the end of this news bulletin.
2: पत्री बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
3: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है। अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
2: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं।
3: जी,
2: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया। तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती। वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
3: जी,
2: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूं कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि माहवारी कैसी चल रही है। माहवारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर माहवारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है।

0: अगर आपकी महावारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना, एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
1: तो डॉक्टर के पास तुरंत जाए।
0: बिल्कुल जाना चाहिए और बताना चाहिए ये। और बहुत सारी चीजें शक्ल देख के डायग्नोज कर सकते हैं हम,
1: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोस
0: बिल्कुल
1: करते हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा,
0: बिल्कुल।
1: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
0: हाँ, तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: उसके
1: है,
0: बारे
1: हरे
0: में बात।
1: रामा हरे कृष्णा
0: हरे
1: फिल्म का
0: राम,
1: ये गीत, आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तर्ज, सुनते
0: बिल्कुल
1: हैं ये गाना।

0: रहना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
2: और
1: है।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह,
1: जी जी
2: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर, कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते।
1: अरे गजब।
2: तो अब वो
1: ऑब्जर्वेशन
2: ऑब्जर्वेशन उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रेनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की।

0: एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया,
1: जी
0: अगर उनका
1: जी
0: टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे।
1: जी
0: तो
1: कई बुजुर्गों को दिखाई कि उनकी कमर दोहरी हो जाती है, और ये
0: बिल्कुल
1: पुराने जमाने में
0: ज्यादा होता
1: ज्यादा
0: था।
1: देखा जाता था।
0: और दूसरा बीमारी होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी
0: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं पे छोट हल्का चोट लगी तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां आप बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना।
0: ये बिल्कुल कोर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है, कि
1: जी
0: अगर
1: जी
0: आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, तो वो
0: ये
1: कम हो तब हैप्पी है आदमी।
0: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। जैसे
1: जी
0: कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए। अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कोर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके ओके
0: हाँ, तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है। इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या
0: सब
1: बात
0: चीज
1: है,
0: वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित एकदम।
0: अनुशासित। जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ
0: अगर आप
1: एकदम,
0: अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
0: और चेहरा देखने से जैसे कि हॉर्मोन्स होते हैं, जिन हॉर्मोन्स को मेल हार्मोन्स और फीमेल हॉर्मोन्स बोलते हैं,
1: जी
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे।
1: जी
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है,
1: ओके
0: तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी
1: जी
0: ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: 6 फुट के
0: सवा
1: ऊपर,
0: छः नहीं 7 फीट का हो सकता है, और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे। जैसे
1: अच्छा
0: आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं
1: जी
0: लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो
1: हाँ
0: जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी है, वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ गए हैं।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो
0: हाँ,
1: एशिया के सबसे
0: वो
1: लंबे।
0: पंजाब में भी कुछ है, वो
1: जी
0: भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप उस हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज़्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहाँ एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और
1: जी
0: उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट। जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो बोला कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह, पर कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ।
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज़्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो
1: जी
0: इलाज कैसे किया जाए।
1: जी
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया, और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो

0: मदर, उसकी मामी, मामा जी, उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरनमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें?
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है,
1: जी
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो वो एकदम एग्जजर्बेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपोज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया, और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है। जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज, जिसको हम बोलते हैं वीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है जहाँ पे वीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का।
1: ये
0: मालिश
1: मालिश
0: करने
1: करना
0: से,
1: कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया। तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया, और
1: ओहो
0: जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो एक और एक दो की जगह एक और एक 11 हो गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया।
1: जी
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई, तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़
1: तो
0: रहा
1: ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर
0: है।
1: हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल,
1: और डॉक्टर साहब, अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो,
0: तुम
1: आनंद
0: भी
1: बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए?
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूं मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं। समझ गए,
0: जी
1: मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब
0: जी
1: जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी,
0: जी
1: फ्रैक्चर

0: की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रूमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है
1: संधिवात
0: शायद
1: जैसी कुछ
0: संधि है,
1: चीज है।
0: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो
1: जी
0: उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
1: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
0: बिल्कुल
1: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर।
0: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए,
1: जी
0: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
1: जी
0: और अगर लेवल ज़्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म,
1: दो तरह के हो
0: दो
1: गए
0: तरह
1: ये।
0: के हो गए। अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफ़ी कॉमन होता है, ज़्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफ़ी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले आज के कुछ सालों पहले ज़्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था, और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता होने वाले बच्चे को, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही ज़रूरी होता
1: ये
0: है,
1: बहुत याद रखने वाली बात
0: बहुत
1: है
0: ही
1: सभी
0: ज़रूरी होता
1: श्रोताओं
0: है।
1: के लिए।
0: बिल्कुल, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है, लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, कि आपको कब्ज रह रहा है अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है,
1: जी,
0: जैसे कि आपका चेहरे का एक भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है, तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया चेहरे का कंप्यूटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है,
1: जी
0: लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए, तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है, जैसे आपने फोटो कोई खींचा है फोटो हिल गया है तो जो
1: जी
0: धुंधला हो जाता है, तो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है
1: नूर चला जाता है।
0: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। फिर
1: महिलाओं में भी इस समस्या को
0: महिलाओं
1: लेकर।
0: में दूसरी समस्या उनका, अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है
1: जी
0: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
0: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं, मैं ये बोलूँगा कि यस 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 99.9% लोगों ने, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
1: जी
0: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप,
1: अच्छा, वो सील ही बना
0: सील लगा दी, क्योंकि अब मरीज
1: लिए।
0: को कभी कभी बताना भूल जाते तो सील लगा दी कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ
1: जी
0: लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है
1: बहुत
0: कुछ।
1: ध्यान रखना है।
0: हाँ, कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है बट जनरली नहीं होता है,
1: ये कौन
0: क्यों
1: सा वाला है? हाइपो।
0: हाइपोथायरॉयडिज्म बात
1: जी
0: करें।
1: जी
0: अब दूसरा इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है,
1: जी
0: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है,
1: ओके
0: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है, अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा, तो
1: जी
0: इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया आपको सिम्टम्स आ गए तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना
1: और
0: पड़ेगा,
1: इस 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते?
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ
1: जी
0: होना शुरू हो जाते हैं बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए क्या हो गया आजकल जो एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का ईयरली,
1: जी जी
0: ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी

0: एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा, ये तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा,
1: जी
0: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज़्यादा, तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है उसमें पसीना ज़्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है उसमें काफ़ी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें डायरिया होता है,
1: जी
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफ़ी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा आपने
0: बिल्कुल
1: जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे
0: हाँ,
1: अच्छा उपाय
0: मतलब
1: है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो
1: जी
0: ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है।
0: डायबिटीज एक तरह से कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे,
1: जी जी
0: क्या बोलते थे, राज रोग, मतलब ये
1: मतलब
0: राजा
1: बहुत
0: महाराजाओं
1: शाही
0: में
1: लोगों
0: होता
1: को
0: है शायद वो,
1: होता
0: अभी ये क्या हो गया, आम रोग,
1: था। जी
0: अब हर
1: हाँ,
0: किसी को डायबिटीज हो रहा है,
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल
0: आप ये
1: बनता जा
0: कह
1: रहा है।
0: सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है, ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है, बट
1: जी
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है।
1: जी
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होती है, ये
1: बिल्कुल
0: नेचर एंड नर्चर।
1: नर्चर।
0: तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं जेनेटिकली, और उसका बेस्ट आइडिया, जैसे आप दुबला पतला पर्सन है उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा, तो जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे भी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, तो उसको हम हेल्दी बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है।
1: जी
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरह से प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज को, तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है
1: जी जी
0: और सबसे बाद में यहां से जाता है, तो
1: जी
0: ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से,
1: जी
0: तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों,
1: जी
0: कि हम खान पीने उधर, जैसे सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता
1: अरे
0: है
1: गजब।
0: ना,
1: जी
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के
0: तो
1: जरिए खाना मंगा रहे
0: ऐप
1: हैं।
0: के जरिए खाना मंगा रहे, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया, वो खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है।
1: जी
0: इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, जैसे खास तौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते और सुबह में टाइम पे, तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग,
1: जी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत
0: वो
1: ज्यादा चल रहा
0: इस पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोगों ने अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं,
1: है।
0: ठीक है।
1: जी
0: अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है,
1: जी
0: जैसे रमजान रखते हैं तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते हैं, 12 घंटा भूखे रहते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके
1: जी
0: अंदर आप दिन में खाना नहीं खाते हैं, आप फलाहार लेते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है। तो पहले से कंसेप्ट है, या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती हैं वो कॉमन है, उनको भी अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे वो दूसरों का उतना शायद पता नहीं, तो ऐसे फास्ट रखते थे, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी, पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, इंटरमिटेंट फास्ट।

0: होना चाहिए,
1: जी।
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से ही
1: ऑलरेडी
0: इंटरमीडिएंट
1: है।
0: फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज हो सकता है कि हम ये हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी।
0: तो उसका रीजन ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए। तो आप हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: उसका बहुत अच्छा असर होने वाला आपके हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे यही सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह
0: उसमें
1: 8 बजे
0: लंच
1: एक
0: आप,
1: ब्रंच जैसा कुछ
0: हाँ
1: है।
0: नहीं, उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं कि जैसे
1: जी
0: आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं, या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया
0: कुछ
1: हल्का
0: लाइट ले
1: सा,
0: लिया तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही हो गई इंटरमिटेंट
0: ये
1: फास्टिंग,
0: इंटरमिटेंट
1: बारह बारह
0: फास्टिंग
1: तेरह घंटे
0: बारह
1: की।
0: तेरह घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल। तो अब यहां एक गाना सुनते हैं
0: हाँ,
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आप सुन, चांद सा रोशन चेहरा,
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है, ओपी
0: बिल्कुल
1: नय्यर का संगीत, सुनते हैं।
0: ये

0: डॉक्टर साहब आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक
0: बोला। आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी,
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता
1: तो
0: थी।
1: सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा,
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है।
0: अच्छा,
1: कि आप कितने बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितने बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, दोनों
0: जी
1: पेयरिंग में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से,
0: जी,
1: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
0: प्रजनन का
1: बनाती
0: काम है,
1: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहाँ से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स।
0: तो पूरा शरीर कवर हो गया।

0: शरीर करोगे। उसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो रह गई है, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो
1: जी
0: थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है,
1: जी
0: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज़ का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि बाकी सब चीज़ें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है, तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो MD स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना, हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने पेंक्रियास का जिक्र किया। इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
0: तो पेनक्रियाज का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पेनक्रियाज से रिलेटेड डायबिटीज है। पेनक्रियाज का Type 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है,
1: जी
0: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है, क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
1: क्या
0: तरह
1: वजह
0: से
1: होती होगी इसकी?
0: इसकी वजह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कि वजन ज्यादा होना,
1: अच्छा
0: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वजन ज्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को खराब कर लेते किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, एल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है, तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगा।
1: जी
0: टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
1: दोनों हो रही हैं, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी
0: हाँ, फिर
1: वो
0: से
1: फिर से
0: बैलेंस
1: यहां आ
0: का
1: गया।
0: जरूरत है, बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उससे महिलाएं कैसे निपटें, खासतौर पर
0: तो
1: ये
0: या
1: बातें बताइए।
0: अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मीनोपॉज में जो चेंजेज होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है, या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है, या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है हमारे को, तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होता है, तो सीवियरिटी ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
1: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं।
0: हाँ, एक तरह से हॉर्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट, उसके लिए हॉर्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है। तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
1: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
0: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हॉर्मोन्स बहुत ज़रूरी है बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज़्यादा, तो
1: जी
0: आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले हॉर्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करेगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उसके बाद में बाहर की चीज़ों पर आएगी।
1: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना और
0: बिल्कुल, अगर
1: प्रक्रियाएं
0: बैलेंस
1: सही
0: नहीं है तो
1: चलना
0: आप
1: ज्यादा जरूरी
0: जैसे
1: है।
0: थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन एक्सिस में तो बाल गिर सकते हैं, तो ये इस तरह के अगर उनका हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, तो ये दोनों चीजों का जो अनुभव है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
0: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं जो हम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
1: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स?

0: देखते हैं।
1: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन के 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग,
0: अरे बाप रे,
1: 1200
0: बारह
1: पेशेंट।
0: सौ
1: हाँ, तो ये 3 दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
0: जी
1: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
0: अनुभव बढ़ेगा।
1: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे देखोगे, बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में अपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ही वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे, यार ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा। तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
0: जी जी
1: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोज करते हो, आप ट्रीट करते हो, कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं, या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिन्स हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज़ करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है
0: जी
1: और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीज़ों का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ आई कहाँ से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज नेचर
0: संभव है
1: में कहीं
0: नेचर के जरिए।
1: कहीं कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में, या जैसे हमारा यजुर्वेद है वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीज़ें है। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया उसके लिए हमने हड़ जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: तो रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज
1: हाँ
0: है
1: उसमें
0: मेडिकल की
1: एक
0: दुनिया में।
1: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना,
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते हैं, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एन्जॉय दैट, और पेशेंट एक्सपीरियंस तो हाई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है ही है, पर बाहर भी कभी जाते तो दे वे लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
0: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहां कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है, वो
0: जी
1: सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस तरह
0: हाँ
1: का,
0: हाँ
1: या दैट
0: हाँ
1: इज कहने
0: वो
1: का
0: ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
1: ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हाँ
0: क्या बात है,
1: या
0: सुनते राजस्थान कनेक्शन सामने आ
1: बिल्कुल
0: रहा
1: बिल्कुल,
0: है बिल्कुल
1: राजस्थान
0: सुनते
1: मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सब रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: रहना ही चाहिए
0: ये गाना सुनते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ
1: बिल्कुल।
0: गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बॉटम लाइन ये है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें नियमित रूप से कराने चाहिए, खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को?
1: या तो मैं ये बोलता हूं कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज और थायराइड।
0: जी
1: बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज़ होती है पर उनको पता नहीं चलता है,
0: जी तो इसलिए टेस्ट बहुत
1: तो
0: मायने
1: टेस्ट से
0: रखता
1: ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज़ पता चलता था, बात है कि वो आँख का ऑपरेशन कराने के, तो आँख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ और शुगर आ गया, है ना। या कोई
0: जी
1: हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन की चेकलिस्ट दी, भी ये टेस्ट कराओ, तो डायबिटीज़ का टेस्ट कराया तो आ गया। तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज़ चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो
0: जी
1: डायबिटीज़ के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का रीडिंग देता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
0: जी
1: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं।
0: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है?
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज़ को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जग रहे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा। तो
0: जी
1: ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका ज़रूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है। पर मुझे खास तौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, अब निकलोगे नहीं। तो उसका वो ये है कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है। और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, उसमें T3 T4 TSH एक टेस्ट होता है,
0: जी
1: थायराइड का, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो
1: बिल्कुल
0: इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय बराड़ा, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद, और मैंने

0: बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इश्यू है जो कि आपने क्वेश्चन की तरह हाईलाइट किए, उनको फायदा होगा उसे। धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बनारस से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं उषा अमोनकर के गाए इस भजन के साथ।

उषा अमोनकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुनते हैं हालिम साबिर का कलाम। इसे आवाज दी है भूपिंद्र ने, संगीत मधु मुखर्जी का है।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वाणिज्य राम की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं दानिश बरेलवी का ये कलाम।

ये कार्यक्रम रंग तरंग। अरिजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार का लिखा ये औकार फिल्मी गीत। इसे संगीत में ढाला है अमाल मलिक ने।

0: उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,

0: इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश असीस कौर की आवाज है, जानी का लिखा ये गैर फिल्मी गीत है और बी प्राक का संगीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल

0: ना ये सबसे बढ़िया रोल नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: सिद्धांत महादेव के संगीत निर्देशन में हम आपको मोती सुल्तानपुरी का लिखा एक औगार फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं, आवाज जावेद अली की।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक

0: में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
1: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज अभिनेता सुनील शेट्टी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में हमने उन्हीं की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बस तुम रहते हो।
1: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ही गीत सुना। मुख्य स्वर अभिजीत का था और फिल्म का नाम था धड़कन। आइए सुनते हैं पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम मोहरा, गीतकार इंदिवर, संगीतकार विजू शाह।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का गीत। गीतकार थी माया गोविंद और संगीतकार थे अनु मलिक। और ये आवाजें हैं मीका सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम है दे दनादन। इशात कामिल के बोल, प्रीतम की धुन।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल, फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी और गायक स्वर हिमेश रेशमिया का।
3: कितने और

ये आवाज थी हिमेश रेशमिया की। और आइए अब सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज रूप कुमार राठौड़ की। फिल्म का नाम है बॉर्डर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहासे हुजूर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत नीति मोहन और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है किक।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

साजिद वाजिद की संगीत निर्देशन में समीर अंजान का लिखा गीत सुनिए, आवाजें नीरज श्रीधर और साथियों की, फिल्म का नाम हाउसफुल 2।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सेम भट्ट की आवाजों में, फिल्म का नाम है मर्डर 2। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हूँ
1: के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
3: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Reports Last Game. And with that, we end.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी। छात्र नेताओं ने प्रदर्शन और तेज करने का किया ऐलान। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छात्र आंदोलन पर सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी बंद। रांची समेत विभिन्न जिलों के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शन। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित। चाईबासा में 10 लाख रुपए के इनामी सहित 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रिम्स में एनएमसी मानकों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर जोर। उच्च स्तरीय बैठक में लंबित निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने देर रात घोषणा की कि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और तेज करेंगे। उनका कहना है कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती, प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। आंदोलन के कारण राजधानी के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में जारी भारी शोर शराबे और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर गतिरोध कम न होने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली तथा आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक राज सिन्हा ने परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई जांच की बात दोहराई।
2: और ये सारा हरकत उन लोगों ने किया बदनाम करने के लिए छात्रों को, पत्रकारों को, और जिस प्रकार से बाउंड्री तक आने दिया छात्रों को और रात के अंधेरे में घेर करके उनको पीटा, खुद हरकत करके और भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रही है। यह कहता है सरकार की बर्बरता की कहानी, यह कहता है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है।
1: इस बीच डॉक्टर अंसारी ने कहा कि भाजपा छात्रों के नाम पर केवल राजनीति कर रही है।
3: सारा मार्केट खुला है, हम तो देख के आ रहे हैं, पूरा घूम के आ रहे हैं, बांस लगा दिया है, तोड़ दे रहे हैं बांस। आज युवाओं की मांग है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, हम लोग उनको चाहते हैं, उनकी बात, उनकी जो भी मांग है हम लोग पूरा कर रहे हैं। बंदी का सर क्यों होगा, जनता नहीं चाहती है यहाँ, जनता हमारे साथ है। ये जब जब विधानसभा चलेगा तब तक ये लोग कुछ न कुछ नौटंकी करेंगे।
1: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद सुबह से ही प्रभावी है। राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक, रातू रोड और कोकर सहित तमाम प्रमुख चौराहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर देखा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में युवाओं की नौकरियां बेची जा रही हैं और प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बना रहा है।
4: यही तो दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों ने इनको वोट देकर के इनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, नौकरी दे नहीं पाए, लेकिन एक दिन में चार चार बार लठिया बरसाने का काम किया, पानी के फहवारे छोड़ने का काम किया, कह के बच्चे लापता हैं कि जवाब सरकार को देना पड़ेगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने जेपीएससी परीक्षा विवाद और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं की जायज मांगों और उनकी आवाज को दबाने के लिए दमनकारी बल प्रयोग कर रही है।
5: देखो आज पूरा झारखंड बंद है। जो दमनकारी नीति झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, इतना संवेदनहीन कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या?

0: ने दिन में तो लाठी चार्ज किया ही, रात में लाठी चार्ज किया, सैकड़ों बच्चे घायल हैं, बेटियों को पे लाठी चार्ज किया, और बच्चों से माफी मांगने के बदले आप पुलिस प्रशासन को बधाई दे रहे हो, लेकिन ये झारखंड के बच्चे हैं, एक एक लाठी की कीमत आपको चुकानी होगी।
1: केंद्रीय मंत्री ने परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच कराने और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम सहित 4 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। डीआईजी ने बताया कि पिछले एक साल में 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब जिले में ऑन रिकॉर्ड कोई नक्सली नहीं बचा है।
2: हमारे यहाँ गंगा जल है, उसका डिमांड बढ़ा।
3: स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड आपको वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे।
1: रांची के रिम्स में चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। संस्थान में एमबीबीएस सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर 250 किए जाने के बाद एनएमसी मानकों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर और नए वार्डों के निर्माण पर विशेष चर्चा हुई। रिम्स निदेशक ने अधिकारियों को लंबित निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सावन के सोमवार पर डाक विभाग ने सिंहभूम मंडल के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा दी है। चांडिल के जायदा मंदिर और बहरागोड़ा के चित्रेश्वर महादेव मंदिर में विशेष स्टॉल लगाकर महज 30 रुपए में गंगोत्री का पवित्र गंगाजल उपलब्ध कराया गया। वरिष्ठ डाकपाल सुधीर कुमार की निगरानी में चले इस अभियान का उद्देश्य हर आम श्रद्धालु तक आसानी से गंगाजल पहुंचाना था।
2: हमारे यहाँ गंगा जल है, उसका डिमांड बढ़ा है सावन के चलते और उसको हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। 30 रुपया में लगभग 250 ml गंगा जल का बोतल है वो सेल कर रहे हैं। ऑफिस में सेल करने के अलावा शिवालय है वहाँ भी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि इसका डिमांड को फुलफिल किया जा सके।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की कमी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 431 अंक फिसलकर 78,111 पर और निफ्टी 135 अंक गिरकर 24,449 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2

करने का किया ऐलान। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छात्र आंदोलन पर सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी बंद। रांची समेत विभिन्न जिलों के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शन। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित। चाईबासा में 10 लाख रुपए का इनामी सहित 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रिम्स में एनएमसी मानकों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर जोर। उच्च स्तरीय बैठक में लंबित निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?

जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में बातचीत या कहीं संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जाने समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूस भरी या फिर आने वाले सुखद कल्पनाओं की जिसे हम साकार रूप देना चाहते थे, ऐसी बहुत सी बातें हम संवादों के जरिए कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद केवल बातचीत करने का या आपसी बोलचाल ही नहीं है, ये दिल को दिल से जोड़े रखता है। संवाद हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रेम विरह शिकायतों से जीवन के सत्य जो है जीवंत बने रहते हैं। ध्यान रहे कि संवाद जारी रखने वाली स्थिति में भी जो मौन की गहराई और शब्दों की पवित्रता के माध्यम से रिश्तों की डोर जुड़ी रहती है, संवाद प्रेम को प्रकट करता है और रिश्तों में दूरी नहीं आने देता। विरह में संवाद की तड़प होती है, यादों के जरिए संवाद जारी रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रोज ही सावन आया, घटा छाई, सुहाना मौसम, हरियाली, बस इन्हीं पर संवाद हो रहा था। आज आप आए और आपने भाई बहन के संवाद सुनने का इंतजार है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने इस कार्यक्रम को आपके साथ अंत तक सुनना है और आज की इबारत बहुत दिलचस्प लिखी है। इसमें गानों का संग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें सुनकर और महसूस करके अधिक आनंद आएगा। हमारे रिश्तों में मधुर मिठास घोलने वाले गानों को सुनने से आसपास के वातावरण में संगीत गूंजने लगता है और जो भी हम कहना चाहते हैं वो सब गीतों के माध्यम से हम कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते

मैं बहुत उत्साहित हूँ रिश्तों में संवाद बनाए रखने के लिए, इस महत्व को समझाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते मजबूत रखने के लिए संवाद होना बेहद जरूरी है। आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र उपाय है। संवाद न होने पर छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। संवाद वाले गीत बहुत से हैं पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है श्रोताओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। हम दिन रात अपनी जिंदगी का गीत गाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते निभा तो रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, परिवार, भागदौड़, लेकिन जिंदगी के बीच में कभी कभी कोई संवाद आ जाता है। किसी अपने की कही भी कोई एक बात, माँ की कोई सीख हमें मिल जाती है, पिता की कोई डांट मिल जाती है, जीवन साथी का कोई सवाल मिल जाता है, बच्चे की कोई मासूम बात सुनने को मिल जाती है और हम अचानक रुक जाते हैं, सोचते हैं क्या मैं सच में यही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था। तो इसीलिए फिल्मी जो गाने हैं इनके बीच में आने वाला संवाद भी केवल ये मनोरंजन नहीं है, ये हमें ठहरने का एक अवसर देता है। हाँ, कि क्या कहा जा रहा है इस गीत में जो नायक और नायिका एक दूसरे से कह रहे हैं। तो यही इसलिए आज हमने इन गीतों को चुना ताकि हम एक पल के लिए ठहरें, कुछ सुने, कुछ समझें, कुछ सोचें कि रिश्तों में संवाद कितना जरूरी है। और इसलिए इन गीतों के बीच आने वाले संवाद एक बहुत बड़ी सीख हमें दे जाते हैं कि रिश्तों में केवल प्यार होना काफी नहीं है, प्यार को शब्द देना भी बहुत जरूरी हो जाता है, है ना। बताइए किस फिल्म का गाना है और पर्दे पर कौन अभिनेता और कौन नायिका है। इस गीत में भी आपको संवाद सुनने को मिलेंगे, है ना, और बताइएगा कौन ये संवाद कह रहा है किसे।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।

0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी, हमारे श्रोताओं ने कहा कि ये फिल्म आंधी का गीत है और इसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन आपस में संवाद कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा आपने। और हम आपको बता दें, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी, गीतकार जो गीतकार थे गुलजार साहब थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डायलॉग वाले गीत से सजी हुई सुरीला सफर की संगीतमय सफर में हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संवाद जरूरी नहीं मुंह से बोले, मगर आपको किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आंखें चेहरे के भाव बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह देते हैं। और आपने सही कहा, रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है। मुझे भी कुछ कहना है, पहले आप शायद ये गीत शामिल हो सकता है। वैसे हम आपको बता दें, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें संवाद है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का एक समय जो है निश्चित है, तो हमने उसी अर्थ में हमने जो गाने चुने हैं, आपके गानों से हमारे गाने कितना मेल खा रहे हैं ये आप देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई अन्य गानों का जिक्र भी किया है जिनमें संवाद हमें सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो फेसबुक खोलने से पहले अच्छा मुझे याद किया आपने और पोस्ट देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज भगवान जी से शायद कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। गीतों में जो बात होगी, तकरार होगी, वो तो होगी, पर आप जो कुछ बातें करेंगी, दो प्रश्न

करेंगी, उनके बहुत सारे उत्तर भी देने होंगे। अरे तो आज आपने इतना हल्का क्यों मांगा, बहुत कुछ मांगना था आपको, है ना? ये कार्यक्रम तो रोज होता है और इस कार्यक्रम के जरिए तो आप हर वक्त हर किसी उद्घोषक से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो गानों में थोड़ा सा अलग हमें सोच मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि इन दिनों झूलों और सावन पर कार्यक्रम ज्यादा केंद्रित हमें सुनाई दे रहा है, आपने कुछ थोड़ा इसको बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से बिल्कुल साफ है कि आज के गीतों का केंद्र संवाद है, यानी ऐसे पुराने गीत जिनमें दो लोगों के बीच बातचीत, सवाल जवाब, मन की बात, शिकायत, प्यार या कोई अनकहा एहसास है, हमें कुछ गीत समझ आए। आपने भी कुछ गीतों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीच में चल रही मीठी बातचीत है तो रूठना मनाना भी है इन गानों में, बल्कि प्यार है, गहरा करने का बहाना भी है, एक तरफ से शिकायत है दूसरी तरफ मनुहार है, और इस तरह से जो गीत पिरोए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूब लड़ लो झगड़ लो लेकिन बातचीत बंद नहीं करा करो, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का निदान होता है। एक श्रोता ने कहा है कि सफर में आप काफी समय बाद आई हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो सफर में आते ही रहते हैं और आप हर दिन एक न एक सफर तो तय करती हैं ना अपनी जिंदगी का। एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार के हल निकल सकते हैं, मन मुटाव दूर हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों को संवाद से जोड़कर जरूर रखिए। और एक श्रोता ने कहा है कि हमारे प्रांत बिहार में लोग संवाद करते हैं जिसे हम बोलचाल की भाषा में बतरस या बदकुचन कहते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है सुबह के दिनचर्या से, महंगाई से, बच्चों और घर की समस्याओं, शारीरिक तकलीफ से, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात चली जाती है और वहीं संवाद फिर बदकुचन पर चली जाती है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग गया तो वो मुंह बनाकर उठकर चल भी देता है। हो सकता है दो तीन दिन बाद फिर किसी से बात नहीं करें, मिले भी नहीं, पर इस तरह जो बदकुचन होता है उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो हम भी आपसे जब संवाद कर रहे हैं तो ये पूछना हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा संवाद रहा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए। मतलब आपने किसी से कभी कोई अच्छा संवाद किया होगा या आपको लगा होगा कि नहीं, मैंने जरूरत से ज्यादा किसी को गलत कह दिया है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई संवाद जिसे आप नहीं भूल पाए, बस उस घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। और हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कभी ऐसा कोई संवाद आपने किया हो कि आपके कुछ शब्दों ने आपके और किसी अपने के बीच की दूरी कम कर दी हो, बड़ा नहीं दी हो बल्कि कम कर दी हो। याद कीजिए वो घटना, वो शब्द, वो लम्हे जब आपको लगा होगा कि हम बहुत दूरी पर थे, लेकिन जब हमने प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, आपस में प्यार भरी संवाद की अदायगी की, तो हम कहीं थोड़ा करीब आ गए। सुनते हैं राजेश रोशन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की।
0: अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ में, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने कहा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये गाना देवानंद साहब ने हेमा मालिनी जी के लिए गाया था फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है कि देवानंद है पर्दे पर और हेमा मालिनी से वो ये बात कह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आप कुछ नया सब्जेक्ट लेकर ही आती हैं जो मनोरंजन भी करता है और एक संदेश भी देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद बहुत जरूरी है लेकिन बस संवाद विवाद में नहीं बदलना चाहिए और अपनी बात कहना सही है पर सामने वाले की भी तो सुनना जरूरी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूं शीतल होए।

आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं और सुनते हैं अमिताभ बच्चन के साथ लता मंगेशकर जी की आवाज, फिल्म का नाम है सिलसिला, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी का संगीत।

0: आपको बताना है, बिल्कुल सीधा साधा जवाब देना है कि पर्दे पर किस नायिका को ये बात कही जा रही है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। फिल्म का नाम था सिलसिला। दोस्तों, कहते हैं कि कितने ही रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच प्रेम नहीं था। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो बहुत था लेकिन वहाँ संवाद नहीं था। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बात नहीं करते थे, मन में शिकायतें थी लेकिन कहते नहीं थे, दर्द था लेकिन बताते नहीं थे, समझाते भी नहीं थे। इसलिए पुराने फिल्मी गीतों में जब अचानक किसी कलाकार की आवाज आती थी तो दर्शक केवल गीत नहीं सुनता था बल्कि उस किरदार के साथ उस पल को जीने लगता है ना। कई बार फिल्मों में होता है, आज भी होता है, जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो इस किरदार को जीने लग जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है। और अक्सर हम उस कहानी को अपनी कहानी समझकर या अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनना पसंद भी करते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतकारों ने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं जिनको अभिनेता अभिनेत्री द्वारा संवाद करते करते गाया गया। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। संवाद होना बहुत जरूरी होता है, आज के गाने भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, एक श्रोता ने, जब हमने आपसे पूछा था संवाद के बारे में सवाल, आप लिखते हैं कि मुझे अपने पापा से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो थोड़ा भूलने लगे हैं, तो जब हम उनसे संवाद करते हैं उन्हें याद आ जाता है, नाम याद आने लगते हैं, पुरानी बातें वो याद करने लगते हैं, फिर वो किस्से सुनाने लगते हैं और डॉक्टर ने भी उनसे बहुत बात करने को कहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की बारात फिल्म का गीत आपने तारिक और जिनत अमान के बीच का संवाद था वो सुनवाया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, जब बात संवाद पर आ ही गई है तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात सिलसिला फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। अरे, हमने तो आपको सुनवा भी दिया है। कहाँ हैं आप, सुन लिया ना आपने? जवाब दीजिएगा हमें, हाँ या ना में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अकेले ही ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, वो भी आपकी संवाद अदायगी के साथ। मैं तो बचपन से रेडियो सुन रही हूँ जब भी समय मिलता है, मगर कुछ समय से मेरी बेटी भी सुनने लगी है, उसे आपकी आवाज़ पसंद है। मुझे भी तो कहती है, जब आप आए तो मुझे बताना, आज वो कॉलेज नहीं गई और मैं उसे बताऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा। अरे।

0: इतना प्यार, इतना स्नेह है ना सर माथे पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद एक अद्भुत शैली है, अपने आप से बात करना भी एक प्रकार का संवाद ही तो है। मैं जब 20 साल का था तब भीतर एक बात मेरे मन में आई, उद्भव हुई कि गुलाब जामुन में सुख नहीं है, फिर अंदर ही संवाद हुआ कि सुख सबको मिल रहा है तो किधर से आ रहा है। इस तरह साबित करने का मौका कुछ महीने बाद संवाद करने का मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हद से ज्यादा संवाद भी रिश्ते बिगाड़ देते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद सदा मधुर और मीठे हो तब तो अच्छे है, वरना चुप ही सही है। वैसे जहां प्रेम और दिल मिले होते हैं वहां अधिक संवाद की आवश्यकता होती भी नहीं है, वहां मौन में भी दिल की बातें देर से हो ही जाती हैं। एक श्रोता ने कहा संवाद हमेशा प्यार से होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं मेरे मैरिज से पहले एक बार मैं और मेरी होने वाली वाइफ घूमने गए थे। एक गार्डन में बैठकर मैंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया। मुझे अचानक ख्याल आया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने कहा आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं, तो उन्होंने बताया कि आप ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का आपने मौका दिया ही नहीं, तो क्या बोलूं। फिर हम दोनों बहुत हंसे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो जिंदगी में संवाद बहुत है, संवाद वही होना चाहिए जिसमें सुगंध और प्यार हो, तभी मजा आता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं संवाद गीतों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें अभी तक लगभग 30 गीतों के नाम शामिल हो चुके हैं, क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में हम दर्शन करने गए हैं धर्मपत्नी के साथ, और वहां से आपके सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, और आप पवित्र गुफा से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, बाबा अमरनाथ की सभी को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शिव हरि का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें, फिल्म का नाम चांदनी।
1: चांदनी।

ना प्रिया, बिन पूछे ये काम किया तुमने, मुझे बदनाम किया।

जी तो सुरीला सफर कार्यक्रम में बस आज यही तक। इतना ही कहेंगे कि सहमति असहमति के बीच भी हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से संवाद करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस इसका

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है? मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको? झारखंड पुलिस को बधाई दे रहे हैं, जिला प्रशासन रांची को, कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगें बदल रही है।

0: कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
1: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही।

0: जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई

0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। विविध
3: भारती से बोल रही हैं।

सदाबहार नगमे, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम उड़न खटोला, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहेब।

0: लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था उड़न खटोला।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनिए, गायिका

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है यास्मीन, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार जानिसार अख्तर और संगीतकार सी रामचंद्र।

0: और आइए अब सुनते हैं फिल्म बारिश का दो गाना, आवाजें आशा भोंसले और चितलकर की, शब्द राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन चितलकर यानी सी रामचंद्र की है।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हा?

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए A.R. कुरैशी का संगीत, शिवान रिजवी का गीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम आलम।

0: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में जारी भारी शोर शराबे के और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर गतिरोध कम करने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद सुबह से ही प्रभावी है। राजधानी रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक, रातू रोड और कुकर सहित तमाम प्रमुख चौराहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर देखा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में युवाओं की नौकरियां बेची जा रही है और प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बना रहा है। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में हुए गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों के द्वारा पिछले 18 दिनों से किए जा रहे आंदोलन और झारखंड विधानसभा के घेराव पर पुलिस लाठीचार्ज की कार्रवाई को लेकर आज साहिबगंज जिला भाजपा की ओर से जिला मुख्यालय के सभी दुकानों को बंद कराया गया। राज्य व्यापारी बंद के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि राज्य सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए और इस गड़बड़ी में संलिप्तता को छुपाने के लिए छात्रों और मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की।
1: छात्रों की मांग सीबीआई जांच होती है तो जांच का आज सरकार में बैठे हुए जो रहनुमा है जिनके इशारे पर इस प्रकार का चोरी हुआ है, छात्रों का हक मारी हुआ है, नौकरियां बेची गई है, नौकरियों का नीलामी हुई है, ये इस प्रकार का नीलामी का सच सामने आएगा, इसीलिए सरकार पीछे हट रही है और सीबीआई जांच कराने से कतराती है।
0: वहीं बोकारो जिले में भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने धनबाद पुरुलिया मुख्य मार्ग को जोदाडी मोड़ के पास जाम कर दिया। रांची में जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी दूर कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का खूंटी में व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोहरदगा में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का लोहरदगा शहर में आंशिक प्रभाव देखा गया। कुछ समय के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने रेलवे साइडिंग के पास सड़क जाम कर नारेबाजी की। इधर भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का गिरिडीह में आंशिक असर देखने को मिला। सड़क पर वाहनों का परिचालन सामान्य है, ट्रेन सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। भाजपा नेताओं ने टावर चौक पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ा हाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम रेंज के डीआईजी अनुरंजन कस्पुट्टा और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम सहित 4 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। डीआईजी ने बताया कि पिछले एक साल में 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब जिले में ऑन रिकॉर्ड कोई नक्सली नहीं बचा है।
2: बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड आपको वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे।
0: रांची के वन्य मुख्यालय परिसर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में आदिवासी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में वन विभाग के लगभग 500 पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वन भवन परिसर में आदिवासी लोक जीवन और संस्कृति को दर्शाती एक विशेष प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित

किया जाएगा। नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहाँ
2: बस ऐसे ही जैसे
1: अब ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम चौंक।
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसी
1: क्यों बोल रही है
2: ऐसा वैसा जैसा कह के।
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहां से सृजन की यात्रा शुरू होती है तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है जिज्ञासा हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा करेंगे।
2: बिल्कुल। और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ लिया। तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी दो सखियां मिलकर ऐसी मस्ती करती है। तो
1: बिल्कुल
2: अच्छा।
1: और ये कहा जाता है ना जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी जितनी गहरी होगी सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज का हमारा विषय भी यही है सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
1: बिल्कुल।
2: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना तो इसके बारे में बात किया जाएगा। और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें। और मेला देखने कब गए क्या खरीदा क्या देखा वहां की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखे चार चार लाइनों में पांच पांच लाइनों में तो मजा आएगा।
1: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं घोड़े बेचकर सोना घोड़ा है। जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना और वो ढेर सारे खरीद के लिए आते थे और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी।
2: बिल्कुल।
1: और वो दिवाली पर खासतौर से
2: दिवाली
1: प्रसाद के रूप
2: खिलौने मिट्टी के
1: चढ़ाए जाते
2: थे खिलौने आते थे
1: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे कि वो चक्री होती थी और जात छोटे छोटे चिमटे बेलन
2: और रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और
1: मिट्टी के भी
2: मिट्टी के भी

0: थे
1: और बाद में चीनी मिट्टी के
0: हाँ,
1: आने
0: और
1: लगे।
0: बड़े सुंदर रंग भी होते थे, गुलाबी सफेद पे गुलाबी हरा ऐसे लाइन करके बड़ा।
1: आप कौन सा रंग खरीदती थी?
0: जो वहां पे मिल जाते थे गुलाबी हरा, इसलिए क्योंकि वही खरीदी।
1: जाहिर सी बात है, जो रंग बोला है वही पसंदीदा रंग होता है उसी को हम जाके चुनते थे। और कई बार रंग उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे। और ऐसा भी होता था कि मेले में जा रहे हैं तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे, हर चीज मिल जाती थी।
0: बिल्कुल।
1: अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है,
0: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं, ताजी हो जाएंगी सबके आज जब बातें करेंगे, है ना।
1: और मेले में और भी तो कुछ होता था, वो तो हिंडोला झूला होता था,
0: तरह तरह के झूले होते थे तो उसका भी एक अलग मजा आता था।
1: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का, माता पिता
0: जाने का। फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढुंढाई मचती थी कि कौन का, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेला जाना तो
1: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई, अभी हम कहीं खो ना जाए, गुम ना जाए भीड़ में। तो मेले का एक अलग अनुभव होता है, सबके भीतर एक मेला होता है, उन मेले का अनुभव होता है। तो उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें, और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है, मुहावरे बहुत सारे हैं, दिन भर चले अढ़ाई कोस, या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
0: जो नावे आंगन टेढ़ा, हाँ, बहुत सारे हैं। तो
1: और बड़े बुजुर्ग हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में लोकोक्तियों में बात किया करते थे, लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है, तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए। तो किन्हें कितने मुहावरे याद हैं लिख भेजे हमें, और अब हम क्या करें बताइए।
0: हम तो गीत सुनते हैं,
1: चलिए।

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती की फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूँ। क्या बात है, अभी यहाँ सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाएगा।
1: क्या बात है, आप इतनी दूर से सुन रही, तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार
0: और शुक्रिया
1: शुक्रिया
0: सुन रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती है।
1: सही बात है,
0: और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं, तो और जिज्ञासा का घर होता है।
1: जैसे और जिज्ञासा में उन्होंने देखिए, हम लोग सोच ही सकते थे कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी वो शांत हो गई।
0: बिल्कुल सही बात है। और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है गूगल मास्टर। जैसे मन में कोई कौतूहल होता है, तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था, टीचर्स की शरण में जाना पड़ता था।
1: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही।
0: और किताबें पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती थी।
1: बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों, जैसे सवाल मन में उठते हैं तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
0: और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खास तौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए,
1: अंतराल लिया जाए, देते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो फिर आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं, और सूरज इतना गर्म क्यों होता है। तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा, ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा सा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल। और ममता जी, इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
1: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ ना कुछ नया जानने की, खोजने की और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है।
0: अभी गाना सुन लेते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा के उसमें चली जाती तो वो ये सुनकर के बहुत उत्साहित होती कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है,
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीद कर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुराने संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहाँ से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयाँ, दरी हैं, तरह तरह के कपड़े, वो भी वहाँ

0: बने बनाए मिलते हैं मेलों में, तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते
1: और
0: भी हैं।
1: मेले में जगहों के बारे में भी पूछते हैं। अब
0: जी
1: हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है, लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
1: और अब एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई हैं। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव हैं, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
0: और एक चीज की हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था।
1: जी,
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी, जो अभी भी मेरे पास है। और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था, जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
1: और देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी, तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला, जिसे
0: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले, काला खट्टा, काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे। तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
1: बिल्कुल, और कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके, वो चांद तारा है, और क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल रखी है, उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोग ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है, उसके ऊपर बैठ के फोटो खींचा रहे, जैसे लग रहा हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह, हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में, तो मेले की यादें ताजा हो जाती हैं। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो भी हम लोग खरीदते थे, क्योंकि उससे ओठ और जवान लाल हो जाती थी, तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा, चढ़ रहा, उतर रहा है, पर्ची निकाल रहा,
0: कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था, वो बहुत आनंद आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा लगी होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोहपाश में बांधा है, देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना, मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देख कर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं, भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है, और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए।
1: जी, और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे, और बहन के लिए मिट्टी के घड़ी घंटी और चूल्हा, हांडी, तवा, बेलन, चकला वगैरह लाते थे, बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं, पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे, जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गाँव में बंद हो गए हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी, तो मुझे खिलौने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता था। मेला देखेंगे, ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे।

0: और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा खिलौने की जिद कर रही है, और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है। वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना, बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है,
1: बिल्कुल
0: मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं। अभी भी मेले लगते हैं,
1: बिल्कुल
0: अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की
1: चीजें
0: लोग आते
1: दिखाते
0: हैं और चीजें मिलती हैं वहां पर। बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने,
1: जी
0: लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते
1: बिल्कुल, अचार है, चूरन
0: हैं।
1: है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें, बर्तने, कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं। और तरह तरह की, जैसे आपने चूड़ियां करीब
0: लेकिन लोगों
1: झुमके
0: के
1: वगैरह
0: पास
1: देखो
0: वक्त
1: मिलते हैं।
0: नहीं है।
1: जी
0: अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है,
1: जी
0: ज्यादातर उम्र दराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
1: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहाँ झूले
0: हाँ,
1: वगैरह होते
0: क्योंकि
1: थे।
0: अब जो हमारे
1: जी
0: एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में ही सब कुछ है, तो सब बच्चे, बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देखाते हैं, दुर्गा पूजा देखाते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे। और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर, कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूं, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था। हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के 4 दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है। वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते हैं कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है। मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई। बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे, लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी। अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए, तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक, तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं।
0: तो अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है,
1: जी
0: तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती।
1: बिल्कुल
0: देखते हैं इस गाने में।

0: तो ममता जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक है। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है कि कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं। तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना, वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की एक कंपनी है, तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे।
0: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसिंह मौजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चैन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यही से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
1: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जीवामे की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
0: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इसको इस खरीदारी को, मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जीवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
1: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जीवामे की वैल्यूएशन

0: 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, रूढ़िवादी परिवार से क्यों न हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
1: जी,
0: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

0: जैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे, और बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है,
1: बिल्कुल
0: और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना।
1: बिल्कुल, घोड़े बेच कर सो जाए।
0: और आज हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि
1: जी।
0: मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है, मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ कोर्स में ही पढ़ के समझते हैं। हम लोग तो
0: हैं।
1: अपने घर में दादी नानी जो थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रही नाचना आंगन टेढ़ा।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। दो तीन दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबरा कर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कट पाकर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी यादें हैं।
0: वैसे ये घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा खुश नसीब कोई है नहीं।
1: बिल्कुल, जिसको गहरी नींद आती हो,
0: गहरी नींद और देर तक आती हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है। और
1: जहाँ बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आई कि पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथ ही लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहते हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया घोड़े बेचकर सोना, अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहती है कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उस घोड़े के उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी, मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती है कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
0: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था, और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है, इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए और नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं।
1: कई बार ऐसी चीजें हो भी जाती
0: है, ऐसी नींद भी होती है
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर चले गए, घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया, जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी, बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को पर कभी, मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो फिर से सो जाए।
0: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया है कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिप

0: भी होती है, और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप
1: बिल्कुल,
0: जगाते रहो उठना ही
1: क्योंकि
0: नहीं।
1: उनकी भी देखिए वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह मतलब पता चला वो 3 बजे सोए
0: अब
1: हैं
0: उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि
1: जी
0: अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई
1: जी
0: है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है।
1: तो चलिए
0: देखते हैं इस
1: सुनते
0: गाने
1: हैं।
0: में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की कार।
3: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में जारी भारी शोर शराबे के कारण देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने लगातार दो बार सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दोपहर बाद सदन

0: उनकी कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद सुबह से ही प्रभावी है। राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक, रातू रोड और कोकर सहित तमाम प्रमुख चौराहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर देखा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में युवाओं की नौकरियां बेची जा रही हैं और प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बना रही है। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में हुए गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों के द्वारा पिछले 18 दिनों से किए जा रहे आंदोलन और झारखंड विधानसभा के घेराव पर पुलिस लाठीचार्ज की कार्रवाई को लेकर आज साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, खूंटी एवं लोहरदगा में झारखंड बंद का असर देखने को मिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट को पूरी तरह नक्सलमुक्त घोषित कर दिया है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम सहित चार उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। रांची के वन मुख्यालय परिसर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में आदिवासी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में वन विभाग के लगभग 500 पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर
2: जो जी जी जी, और उन्होंने एनएसजी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसजी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
1: गाना,
2: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे।
2: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
1: ऑडिशन से मिली थी?
2: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो,
2: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
2: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
1: क्या बात है।
2: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
2: ओके।

0: मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल, क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया,
1: हाँ
0: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल
1: ये
0: टीम के साथ काम
1: बिल्कुल
0: करने के।
1: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
0: ओ,
1: उन्होंने
0: टुवर्ड्स
1: शूट
0: द
1: किया
0: एंड ऑफ द
1: था।
0: वर्ल्ड।
1: यस सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स तो वो मतलब बहुत ही कमाल का
0: चार
1: एक्सपीरियंस
0: पांच
1: था।
0: धड़कन मिस।
1: हाँ बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, तो बर्लिन आले जब होती है ना बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी,
0: वाह,
1: लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
0: बिल्कुल।
1: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
0: क्या
1: तो
0: एक्सपीरियंस था वो एकदम, है
1: हाँ
0: ना।
1: मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे
0: वाह
1: हैं किसे, कियानो रीव्स पर
0: वाह वाह वाह,
1: ये
0: यही तो
1: कहानियां
0: मजा है।
1: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्ज कार्ल्टन में ठहराया गया था, तो हम तो
0: वाह
1: पागल
0: वाह,
1: हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट।
0: ग्रैंड।
1: या बट थैंकफुली लेटर इन लाइफ दिस बिकेम अ नॉर्म इन लाइफ, लाइक मेनी मोर फिल्म्स हैपेंड लाइक दिस, जहां मतलब बहुत ट्रेवल मैंने किया, जूरी में भी रही, और ये धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो
1: दिस इज द
0: है,
1: बिगिनिंग।
0: यस बिल्कुल, लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा।
1: जी
0: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
1: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
0: मेनन के साथ।
1: महाराजा मेनन के साथ ही किया
0: जी।
1: एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड। फिर कुछ दिन कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा
0: मजा नहीं आ
1: नहीं है
0: रहा था।
1: कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा नहीं
0: उस
1: हो रहा
0: दौरान एक
1: था।
0: बांग्ला फिल्म भी की,
1: बिबोर, हाँ
0: बिबोर।
1: बांग्ला बिबोर भी की, फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
0: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
1: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
0: ये भी
1: हाँ
0: था।
1: प्यार हो गया
0: वाह
1: ये भी था,
0: वाह।
1: दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो रॉयल ओपरा हाउस में, जॉसलिन पुक जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
0: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
1: द थिंग इज इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक
0: बिल्कुल।
1: प्रोफेशनली चलती है वो, लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए, कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता है यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी, क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूं जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा, पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे, ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे मतलब

0: अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स।
0: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
0: हाँ
1: अलग-अलग प्रोडक्शंस में काम
0: यस
1: किया।
0: किया। और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो
1: वाह
0: मतलब
1: वाह, क्या
0: हाँ,
1: बात है।
0: इट वॉज फैंटेस्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
1: एवरीथिंग
0: या
1: यस। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई।
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना, फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको, बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वॉज लाइक यू नो जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रहे वहां रही थी पर यहां काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर। तो मुझे लगा कि यहां थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
1: तो आप वहां से वापस आ गई।
0: वापस आ गई। और
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं, सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी,
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई क्योंकि
1: अच्छा।
0: वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे,
1: जी
0: ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे, और
1: ओके अच्छा
0: मार्टिन शीन, काल पेन, ये सब
1: हाँ,
0: भी, वो
1: वो दूसरी,
0: इंटरनेशनल फिल्म
1: करेक्ट
0: थी। या
1: करेक्ट।
0: या
1: जी जी जी
0: या
1: बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: और
1: और एक ट्रेजेडी होने वाली है, उसके इर्द गिर्द
0: हाँ
1: बुनी
0: उसकी
1: गई फिल्म।
0: हाँ, फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब तो काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहां भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की
0: बिल्कुल
1: बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूरजहान के गाने जो हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा,
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहां है,
0: बिल्कुल
1: वो भी सुना जा सकता
0: वो
1: है।
0: भी, हाँ हाँ वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूं कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की,
1: जी
0: मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव NY, सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें.
0: वो एक फिल्म थी, यस
1: वो
0: यस।
1: मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी. और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम. सो
0: अरे
1: आई हैड द
0: वाह,
1: प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है,
1: स्क्रीन.
0: मजे की बात है।
1: हाँ नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली. मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी. और बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं. बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी. लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास. और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो. स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं कि आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता है.
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप
1: हाँ
0: कास्ट वाला मामला
1: हाँ बट
0: होता है।
1: ऐसा नहीं होता है. हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने,
0: हाँ,
1: पार्च्ड
0: मैं
1: जो
0: बस उसी की तरफ आ
1: या
0: रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है
1: हाँ
0: पार्च्ड, जो
1: पार्च्ड.
0: महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना
1: यस,
0: चाहिए।
1: और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन
0: अरे
1: इनिशियली.
0: वाह,
1: यस
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था,
1: हाँ,
0: वाह।
1: मैंने ये लिखा था. और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम, और हम सोचे थे कुछ करे कुछ करे. तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी. उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं. मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको. सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का. एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले. और ऐसे करके बनी वो.
0: वो एक शानदार फिल्म बनी।
1: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी. और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें।
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई. एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग.

0: एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, यू नो वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज अ
1: ओहो
0: सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों, ही शॉट द फिल्म.

0: हाँ
1: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची
0: यस,
1: एक तरह
0: यानी
1: से।
0: लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई, यू
1: वाह
0: नो. सो इट वॉज रियली फैंटास्टिक. एंड ऑल्सो वर्किंग विथ सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए
0: जी
1: क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म
0: फिल्म
1: है।
0: है. हाँ, तो अगेन देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
1: वाह
0: ही इज अनअपोलोजेटिक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट
1: बिल्कुल अपनी
0: जो
1: तरह की फिल्में करनी है।
0: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवाशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था, तो मैं एक्चुअली आबू धाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येलो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवाशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूं,
1: वाह
0: दैट्स ऑल.
1: क्या बात है। और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी
0: बिल्कुल
1: देवाशीष की तमाम फिल्मों की
0: बिल्कुल
1: तरह।
0: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है, यू
1: बिल्कुल
0: नो, इज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल। तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है और
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए
0: या
1: क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं।
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल पीछे भी
0: मैंने
1: वो
0: गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है
1: अच्छा
0: पे थी वो. और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था, क्योंकि
1: अच्छा
0: अनंत जी
1: ऐसा
0: के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी. उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ, तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही. आई नो व्हाई कांट इट बी अ शी, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली ऑफरिंग मी अ रोल इन द फिल्म बट नॉट द सेंट्रल कैरेक्टर.
1: राइट
0: सो ही सेड ओके. और मैं डैलस जा रही थी नेक्स्ट डे किसी और फिल्म के लिए. व्हेन आई केम बैक ही सेड कि ओके दीज आर योर डेट्स एंड यू कम, एंड या नाउ इट्स नॉट ही इट्स शी. आई
1: वाह
0: वाज लाइक ओके
1: वाह
0: वंडरफुल.
1: क्या बात है।
0: हाँ, देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई
1: वो भी उनके साथ ही है
0: उनके
1: बिल्कुल
0: साथ
1: जिसका
0: की,
1: जिक्र हमने अभी पीछे किया।
0: बिल्कुल
1: देश की पहली डॉक्टर महिला
0: देश की
1: डॉक्टर
0: प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर.
1: जी
0: हाँ, वो की मैंने. और उसमें तो बहुत ही, मतलब इट वॉज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणेचा मुलगी हूं.
1: क्या बात है
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया, एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज, कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो,
1: है।
0: इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है। तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ।
0: हाँ, अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्में
0: हाँ, उनके
1: ये तो
0: साथ मुझे
1: कमाल
0: काम
1: की
0: करने
1: बात
0: में
1: है।
0: बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश, और स्टोरी टेलर भी की, फिफ्थ, यस,
1: लीजिए एक फिल्म तो छूटी गई
0: आई हैव
1: थी।
0: डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है क्या बात है। अच्छा एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है और
0: बिल्कुल
1: बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया
0: जी
1: है।
0: जी जी जी एंग्री इंडियन गॉडेसेस एक्चुअली पूरा इंप्रोवाइज्ड फिल्म है, और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो

0: डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माई कैरेक्टर, एवरीबडी ऑल्सो डिवेलप देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय, विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स वाई आई हैड टू आई ज्वाइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. देव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी, जबकि मैं, मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटिल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड
1: लेकिन
0: वक्त
1: फिर
0: पे
1: बीच में
0: यहाँ डेट
1: चीजें
0: आए तो हो
1: दूसरी.
0: गया. एनी एनी वे सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था 1 साल पहले और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की, मतलब, कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो एवरीथिंग वॉज. सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस, एंग्री इंडियन गॉडेसेस.
1: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का. यहां भी एक गाना सुनते हैं,
0: बिल्कुल.
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, बट
1: वाह,
0: उसका जो, मतलब, मेरा फेवरेट गाना बावरा मन, वो सॉन्ग.
1: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है, अब
0: हाँ
1: हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते
0: स्वानंद माफ कर दे
1: हैं.
0: पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था
1: तब से
0: ये.
1: गाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल.

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माई फादर एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माई गायनोकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार?
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए?
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज सो आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यू नो एंड इट वॉज अनरियल। और इट वॉज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माई फादर टू
0: द सेम थिंग।
1: या इट वॉज ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया CML। सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माई मदर।
0: ओ गॉड।
1: तो मैं रिपोर्ट्स जो है हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड 9 ईयर ओल्ड, अभी वो 9 साल की थी डॉटर एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है। मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूं नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर। इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली देर इज नोबडी एल्स, so how would I do this and the expense

0: expenses of my treatment is obnoxiously high.
1: हो
0: इनिशियली इंश्योरेंस ऑल्सो रिफ्यूज माई क्लेम.
1: क्यों?
0: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूं. एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस.
1: आप जीती?
0: यस, बट द थिंग इज देयर वर टू मेनी बैटल्स. यू नो, इसमें मैं हील कैसे हूं? बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग एंड आई वॉज कमिंग एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म.
1: वो तो रखा ही हुआ था।
0: तो इट वॉज जस्ट आई हैड रीच द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा.
1: बिल्कुल।
0: बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा. यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो इफ नॉट नाउ देन वेन. वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? दैट्स वेन आई रीच्ड आउट. मेरा एक गर्ल गैंग है, मैंने सबसे पहले उनको बताया.
1: वो लोग कौन है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है.
1: इसीलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी.
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकणा है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है. दिस वॉज आर गर्ल गैंग. ऋचा चड्डा है. तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली. शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, यू नो, जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे. उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माई मदर्स लाइफ ईजियर कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं. संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं. और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है.
1: गजब.
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ. एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है. मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन. मुझे हर
1: जबकि 1.5 साल बीत चुका है.
0: हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए. बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सबके बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे. और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI. बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग. और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके.
1: ये कितना मुश्किल था.
0: ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था. और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था. एटलीस्ट 1 पर्सन इज टेकन केयर ऑफ. मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम. पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी. आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट. और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म. आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक.
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए.
0: ये
1: इशारे इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल
1: गुजर रही थी.
0: जिस दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी. और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूं उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं. फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मिलती हूं क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट होगा.
0: मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है. पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन. उसने मुझे अपने पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर.
1: वेरी डिफिकल्ट टाइम.
0: वेरी डिफिकल्ट. शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप. और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं हम
1: वाह वाह
0: इसी के बारे में लिखते हैं।

0: क्या बात है.
1: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट. तो दैट इवनिंग वॉज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने. और दैट वॉज द लास्ट इवनिंग. एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
0: देख लेंगे.
1: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि ठीक हो जा. अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील. ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट. एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले. फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया. और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया. और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने.
0: क्या बात है. और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया.
1: यस, हमने शोज भी किए अब तो.
0: पहला शो कब कहां हुआ था?
1: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ.
0: जी जी.
1: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है. और फिर आगे और भी करेंगे शोज.
0: यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए.
1: हाँ
0: सुनते हैं.

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑन्कोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। जैसे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट भी आए थे देखने, और लखनऊ में बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे, और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो, आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं, क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है। पर स्क्रीनिंग करवाना, अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की, ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूं, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो। हाँ, उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है, तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट। और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
2: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ, अपना प्ले कर रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप यही कर सकते हो,
1: जो भी है बस
2: हियर एंड नाउ। कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे, ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था, बट अब तो मतलब ये इंटरनल है, वी रियली डोंट नो। मतलब मैं एक दिन पूरा आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस। हाउ बिजार इज दैट। मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन, मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट, मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का, मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट। सो हाउ देन, यू जस्ट नेवर नो। तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवार ता हबे, आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ। मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी, मैं दोस्तों को बुला लेती थी, वहां हमारे अड्डे चलते थे, वहां कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले मतलब ये ताकि वो वक्त निकल जाए, मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा लिए,
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया प्रॉपरली।
2: यस,
1: कि यस आई एम गोइंग थ्रू दिस,
2: यस आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट, आई एम एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस। और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तनिषा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
2: नहीं मत कल का सिर्फ पता है, क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है।

0: वहाँ हैबिटेट सेंटर में
1: तो क्या अगले
0: नहीं,
1: प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं अभी, पर आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स, फिल्म भी लिख रही हूँ प्ले भी लिख रही हूँ।
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है, अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ, हमने लिखा है हम एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो, सो शी हैज डायरेक्टेड इट।
1: ओके, वाओ, बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही हैं, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं। बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है। देन आई स्पेंड टाइम विथ हर, खाना बनाने में मुझे मजा आता है, और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी
1: काम करना पड़
0: कॉन्सेंट्रेट
1: रहा है।
0: करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ।
1: क्या बनाती हैं?
0: हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा खाना आजकल जो हो रहा है। मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो उसको बुला, मैंने कहा क्या घर पे लोग बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है मेरी वजह से। अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन्स, उसको सब एफर्टलेसली आता है, इतना सुन चुकी है वो किस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी।
1: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ। बिल्कुल
0: वो
1: सही है।
0: एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है, अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है वो मिनरल्स है और ये
1: पहले ही बोल देती है।
0: मिलेगा।
1: क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे।
0: बिल्कुल, और जाते जाते एक गाना,
1: जरूर
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें
0: करे
1: जीने के
0: जीने
1: लिए
0: के
1: सफर,
0: लिए।
1: फिल्म का ये गाना।
0: यस
1: इस गाने को इंदीवर ने लिखा है
0: हाँ
1: और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हैं।

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से और
0: जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी हैं आपकी अनगिनत यादें।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आज विधानसभा के घेराव का प्रयास किया। विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पुरानी विधानसभा के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को खेलगांव स्थित कैंप जेल में रखा गया है। जेपीएससी में हुई कथित धांधली के विरोध में विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा की ओर से आहुत बंदी का असर धनबाद में देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बंद को सफल बनाने में जुटे हैं। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 में किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज समाहरणालय परिसर साहिबगंज से जागरूकता रथ को उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के किसानों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित धान एवं भदई मक्का फसलों का बीमा कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को रांची नगर

0: निगम क्षेत्र में सभी मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान मांस मछली और मुर्गे सहित संबंधित खाद्य पदार्थों के क्रय और विक्रय पर भी प्रतिबंध रहेगा। रांची नगर निगम की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किया गया। अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी आदेश में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ। मेरा नाम है सलमा और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिल की बातें, दिलदार की बातें, उल्फत की बातें और कुछ प्यार भरे चुनिंदा नगमात की सौगात कार्यक्रम छाया गीत में। वो ना आए तो सताती है खलिश सी दिल को, वो जो आए तो खलिश और जमा होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है।

खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगु में, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल और ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई।

हर शाम ये कहते हो कि कल शाम मिलेंगे, आती नहीं वो शाम जिस शाम मिलेंगे। अच्छा नहीं लगता मुझे शामों का बदलना। कल शाम भी कहते थे कि कल शाम मिलेंगे, आती है जो मिलने की घड़ी। करते हो बहाने, डरते हो डराते हो कि इल्जाम मिलेंगे।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये राहे मोहब्बत है, यहाँ चलना नहीं आसान। इस राह में तुम जिससे मिलो बदनाम मिलेंगे, उम्मीद है वो दिन भी कभी आएंगे। सुन लो, हम तुमसे मिलेंगे और सरे आम मिलेंगे।

बांध लेंगे हाथ पे, सीने पे सजा लेंगे तुमको, जी में आता है तावीज बना ले तुमको, फिर तुम्हें रोज संवारें, तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा लें तुमको।

0: कभी ख्वाबों की तरह आंखों के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला लें तुमको, है तुम्हारे लिए कुछ ऐसी अकीदत दिल में, अपने हाथों में दुआओं सा उठा ले तुमको, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे और तुमसे चुरा ले तुमको।
1: ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे

0: से दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा।
1: उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे फेम 103 मेगाहर्ट्ज पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। शाम 6 बज के 2 मिनट पर आप सुनिएगा किसान वाणी कार्यक्रम। शाम 6 बज के 30 मिनट पर आप सुनिएगा ग्रामीण सभा कार्यक्रम।

शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल

शाम 7:15 पर आप सुनिएगा विधानसभा समीक्षा, शाम 7:20 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग आप सुन सकेंगे। खुला आकाश का समय होगा शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां आप सुनिएगा संसद समीक्षा, शाम 8:15 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, न्यूज़ एट 9 रात्रि 9 बजे, उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से।

हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। और हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी चर्चा का पहला विषय है अमर क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी के बारे में एवं बलिदान दिवस के बारे में। दोस्तों, खुदीराम बोस का नाम भारतीय इतिहास में साहस, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में खुदीराम बोस ने अपने देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया था। खुदीराम बोस का प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मेदिनीनगर जिले में हबीबपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति गहरा प्रेम था। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और भारतीयों के साथ अनेक प्रकार के अन्याय किए जाते थे। देश की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचार ने उनके बाल मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि धीरे धीरे उनके भीतर देश को स्वतंत्र कराने की भावना मजबूत होती गई। वे बचपन से ही निडर और साहसी थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ना शुरू कर दिया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान किस तरह से है, ये इनके बारे में जानते हैं। 20वीं शताब्दी में आरंभ में बंगाल स्वतंत्रता का आंदोलन एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उस समय अनेक युवा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे। खुदीराम बोस ने भी इसी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पर्चे बांटे, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने जैसे कार्य किए। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं था, उनके लिए देश सबसे पहले था। वे मानते थे कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए युवाओं को आगे आना ही होगा। मुजफ्फरपुर की घटना क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, खुदीराम बोस के जीवन का सबसे चर्चित घटना मुजफ्फरपुर की घटना है। वर्ष 1908 में उन्हें ब्रिटिश अधिकारी डल्लस किंगफोर्डस को निशाना बनाने का कार्य सौंपा गया। किंग्सफोर्ड्स अपने कठोर निर्णय और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सख्त रवैये के लिए जाना जाता था। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चासी इस मिशन के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे। 30 अप्रैल 1908 की रात उन्होंने एक गाड़ी में फिलफोर्ड्स की गाड़ी समझकर बम फेंका। दुर्भाग्य से उस गाड़ी में फिलकोर्ट्स नहीं था। इस घटना में 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने खुदीराम बोस और उनके साथियों की तलाश तेज कर दी। प्रफुल्ल चाकी के गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस ने को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, खुदीराम बोस का बलिदान हमें क्या सिखाता है, इसके बारे में जानते हैं। खुदीराम बोस का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली सीख, देशभक्त, देश प्रेम। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अधिक महत्व देश को दिया। आज हमारे सामने युद्ध या विदेशी शासन जैसी प्रसिद्धियां नहीं हैं, लेकिन देश के प्रति हमारा कर्तव्य आज भी है। हमें ईमानदारी से अपने कार्य करना चाहिए और देश

के विकास में योगदान देना चाहिए। दोस्तों दूसरी सीख है साहस। खुदीराम बोस ने कठिन परिस्थितियों में भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमें उनके जीवन की कठिनाइयों से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों तीसरी सीख है त्याग और जिम्मेदारी। उन्होंने अपने जीवन का त्याग देश के लिए किया। आज इससे इतनी बड़ी कुर्बानी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम अपने देश के लिए ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी का त्याग तो कर ही सकते हैं। चौथी सीख है युवाओं की शक्ति। खुदीराम बोस इस बात का उदाहरण है कि युवा शक्ति किसी भी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवाओं के पास ऊर्जा, साहस और नए विचार हैं। यदि उनका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है, इसके बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं। दोस्तों आज का युवा देश का भविष्य है। हमारे सामने आज़ादी के समय जैसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन आज भी देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे कि शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, नशे की समस्या, साइबर अपराध और सामाजिक देशभाव जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं। दोस्तों आज हमें खुदीराम बोस से प्रेरणा लेकर इन समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें नशे से दूर रहना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, शिक्षा को महत्व देना चाहिए और सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का सही उपयोग करना चाहिए। देशभक्त केवल देश के लिए नारे लगाने का नाम नहीं, बल्कि सच्ची देशभक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का है। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े, शिक्षक ईमानदारी से शिक्षा दे, डॉक्टर अपना कार्य जिम्मेदारी से करता है, किसान मेहनत करता है और प्रत्येक नागरिक कानून का पालन करते हैं, तो यह भी राष्ट्र सेवा एक रूप में है। दोस्तों खुदीराम बोस का जीवन भले ही केवल 18 वर्ष का रहा, लेकिन उनसे साहस और बलिदान की कहानी सदियों तक याद आएगी। दोस्तों 11 अगस्त हमें केवल एक क्रांतिकारी की मृत्यु को याद करने का नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमें बहुत बड़े संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है। हमें अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करना चाहिए और देश की एकता, अखंडता तथा विकास के लिए अपना योगदान देना चाहिए। दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी के बारे में। दोस्तों इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों इस गाने के बाद आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है विविधा के रंग, आकांक्षाओं के संग नए युग का नया युवा। वार्ताकार है रश्मि पांडे।
1: विविधता के रंग, आकांक्षा के संग एक नए युग का युवा विमर्श। विविधता के रंग, आकांक्षा के संग एक नए युग का युवा विमर्श आज के दौर की उस बदलती हुई युवा सोच को दिखाता है जो अपनी अलग अलग संस्कृति, भाषा और विचारों को साथ लेकर एक नई दुनिया बनाना चाहती है। यह विमर्श समाज में सबको साथ लेकर चलने, नई उम्मीदों को पूरा करने और तकनीक के जरिए बदलाव लाने की बात करता है। नए युग का युवा। भारत के युग डे को राष्ट्रीय युवा दिवस कहा जाता है। यह हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने सन 1984 में इसे मनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नए युग का युवा वह उज्जवान और आत्मनिर्भर शक्ति है जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर कविता कोश तकनीक और अपने मजबूत कंधों पर समाज को नई दिशा दे रहा है। वह दिशाहीन होने के बजाय अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। नए युग के युवा की विशेषताएं: आत्मविश्वासी और स्पष्ट सोच। युवा इधर उधर देखकर या दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करता है। चुनौतियों से दोस्ती। कठिन परिस्थितियों और बाधाओं से घबराने के बजाय वह उनका सामना करना जानता है। तकनीकी दक्षता। डिजिटल दुनिया और नए आविष्कारों को अपनाकर वह देश और समाज को आगे बढ़ा रहा है। कर्मठता। वह केवल सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए बड़ा परिश्रम करता है। विविधता और युवा सोच।

0: पहचान। आज का युवा अपनी संस्कृति और भाषा को गर्व के साथ अपना रहा है। स्वीकार का भाव, समाज के हर वर्ग और सोच का सम्मान बढ़ रहा है। नई दिशा, पुरानी पाबंदियों को छोड़कर युवा नए रास्ते खुद बना रहे हैं। आकांक्षाओं की उड़ान, बड़े सपने, युवाओं की सोच अब स्थानीय दायरे से निकलकर वैश्विक हो गई है। नवाचार, तकनीक और नए विचारों से हर क्षेत्र में बदलाव लाया जा रहा है। सपनों की सच्चाई, मेहनत और अपने दम पर आगे बढ़ने की ललक तेज हुई है। नए युग का विमर्श, समानता की बात, लिंग, जाति या धर्म से ऊपर उठकर बराबरी की मांग हो रही है। डिजिटल आवाज, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की राय खुलकर सामने आ रही है। भविष्य की नींव, यह विमर्श केवल बातचीत नहीं बल्कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प है। नए भारत के विकास में युवाओं की भूमिका और उनकी बदलती सोच हमें वर्तमान में देखने को मिलती है। नए युग का युवा केवल सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक नौकरियों से आगे बढ़कर स्टार्टअप, तकनीकी नवाचार और सामाजिक बदलाव की दिशा में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। उनकी आकांक्षाएं उच्च शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और देश के विकास में सीधी भागीदारी पर केंद्रित है। नए युग के युवा की आकांक्षाएं, नवाचार और स्टार्टअप, नौकरी ढूंढने के बजाय खुद रोजगार पैदा करने और नए आइडिया पर काम करने की तीव्र इच्छा। डिजिटल और तकनीकी कौशल, AI, डेटा और आधुनिक तकनीकों में महारत हासिल कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना। वित्तीय स्वतंत्रता, कम उम्र में आत्मनिर्भर बनना और अपने दम पर आर्थिक निर्णय लेना। सामाजिक और नैतिक बदलाव, पर्यावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और समानता जैसे मुद्दों पर मुखर होकर काम करना। वैश्विक पहचान, कला, खेल और विज्ञान में देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना। नए युग के युवा, प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रेरणादायक कविता युग का जुआ से जुड़ा है। यह वाक्यांश युवाओं को बिना भटके अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों को निभाने का संदेश देता है। कविता का संदेश और विशेषताएं, भटके नहीं, युवा दाएं बाएं या पीछे ना देखें और ना ही हिम्मत हार कर अपनी आंखें नीचे करें। कर्म पर ध्यान, उन्हें अपने मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी लेनी है क्योंकि सामने युग का चुनौती पड़ा है। साहस, नए युग का युवा संकटों और गहरी घाटियों जैसे कठिन रास्तों से पार पाना जानता है।
1: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था विविधा के रंग, आकांक्षाओं के संग नए युग का नया युवा विमर्श। वार्ताकार थी रश्मि पांडे। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए हम बातें करते हैं एक राष्ट्र एक ध्वज एक पहचान, घर घर तिरंगा विषय पर। दोस्तों, भारत केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं, भारत अनेक भाषाओं, धर्मों, संस्कृति, परंपराओं और विचारों का संगम है। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इन सभी विविधताओं को एक सूत्र में बांधने का नाम काम करता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा। हमारा तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, यह करोड़ों भारतीयों की आशाओं, सपनों, संघर्षों और बलिदानों का प्रतीक है। जब हम तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की याद आती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। तिरंगे के तीन रंग हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि देश और समाज के लिए आवश्यकता पड़ने पर हमें निस्वार्थ भाव से आगे आना चाहिए। सफ़ेद रंग शांति, सत्य और सद्भाव का संदेश देता है। वहीं हरा रंग समृद्धि, विकास और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। बीच में स्थित अशोक चक्र हमें तीन रंग आगे बढ़ने और रहने की प्रेरणा देता है। इसलिए घर घर तिरंगा केवल अपने घर पर झंडा लगाने का अभियान नहीं, यह अपने घर, अपने समाज और अपने दिल में देशभक्ति की भावना को स्थान देने का संदेश भी है।

दोस्तों, आज के युवाओं की भूमिका इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण है। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। हमारे पास ऊर्जा है, नई सोच है, तकनीक है, तकनीक समझने की है और कुछ नया करने का साहस भी है। इसलिए हमें केवल सोशल मीडिया पर देशभक्ति की तस्वीर लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कार्यों से भी देशभक्ति दिखानी चाहिए। अगर हम वास्तव में तिरंगे का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें ईमानदारी से पढ़ना, मेहनत करना, कानूनों का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं का सम्मान करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और देश की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाना सीखना होगा। दोस्तों, युवाओं से मेरा विषय आग्रह है कि अपने सपनों को केवल अपने भविष्य तक सीमित नहीं रखिए, अपने सपनों में भारत का भविष्य भी शामिल कीजिए। आप डॉक्टर बने, शिक्षक बने, इंजीनियर बने, सैनिक बने, वैज्ञानिक बने या किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपने काम को देश के प्रति और प्रगति से जोड़ते रहना चाहिए। आज हमारे सामने कई चुनौतियाँ हैं, प्रदूषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, साइबर अपराध, नशे की समस्या और सामाजिक भेदभाव। इन समस्याओं से लड़ने में युवाओं की सकारात्मकता, सोच और सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक पड़ती है। दोस्तों, याद रखिए, देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर देश की रक्षा करने का नाम नहीं है, बल्कि एक विद्यार्थी का मन लगाकर पढ़ना भी देशभक्ति है। एक युवा का नशे से दूर रहना भी देशभक्ति है। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना भी देशभक्ति है। सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना भी देशभक्ति है और पेड़ लगाना और पर्यावरण बचाना भी देशभक्ति है। जब हमारे घरों पर तिरंगा लहराए तो उसके साथ हमारे अंदर भी जिम्मेदारी की भावना लहरानी चाहिए। एक राष्ट्र क्योंकि हमारी पहचान भारतीय है, एक ध्वज क्योंकि हम तिरंगा हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, एक पहचान क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम भारतवासी हैं। तो इस भावना को केवल एक दिन तक सीमित न रखें। हमें तिरंगा घर पर कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हमारे विचार और व्यवहारों में हमेशा जीवित रखना चाहिए। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे एक राष्ट्र एक ध्वज एक पहचान और घर घर तिरंगा विषय पर। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी गाने के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। आपकी दोस्त आराध्या माही को आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आज विधानसभा के घेराव का प्रयास किया। विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पुरानी विधानसभा के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जेपीएससी और जेएसएससी समेत कई परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के विरोध में पिछले 18 दिनों से रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने आज भाजपा नेता दीपक प्रकाश धरनास्थल पर पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश आयु या लिंग को ध्यान में रखते हुए सभी पर लागू होता है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने आज लोकसभा में चियां की हवाई अड्डे के विकास और वहां से जल्द नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया और केंद्र से लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने की मांग की। पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना सोननगर रेलखंड पर गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच रिवर्सिबल लाइन पर आज करीब दिन के 11 बजे एक मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इन डिब्बों में कोयला भरा हुआ था। इस घटना से डाउनलाइन पर परिचालन ठप है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लत्तर वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाई, जो भी हमारी लत्तर वर्गीय सब्जियां हैं जैसे कद्दू, लौकी, तोरी, खीरा, इसके प्रबंधन के लिए बीजों को बोने से पहले फफूंद नाशक से उपचारित करें, खेत की गहरी जुताई करें और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम के तेल या फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। किसान भाई, जो मुख्य रूप से जो कीट जो लगते हैं उसमें है फल मक्खी। यह कीट युवा फलों में छेद करके अंडे देता है जिससे फल जो है वह सड़ जाते हैं। लाल सुंडी, यह पत्तियों को कुतर कर छेद करती है और पौधों को नुकसान पहुंचाती है, जिसे चेपा और माहू भी है। ये कोमल अंगों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं।

इनके प्रबंधन के लिए बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करें ताकि छुपे हुए कीट और अंडे धूप में नष्ट हो जाएं। बुआई से पहले बीजों को सही फफूंदनाशक या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। जो ग्रसित पत्तियां हैं और जो फल हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर दें और खेत में प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप लगाएं। नीम आधारित कीटनाशक जैसे नीम के तेल का छिड़काव करें। मित्र कीटों और पक्षियों को बढ़ावा दें। अधिक प्रकोप होने पर सुरक्षित कीटनाशकों की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। किसान भाई, जब भी आप लत्तर वर्गीय सब्जियां उगा रहे हैं, अगर इसमें किसी भी प्रकार के कीट या अन्य कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो इसका आप तुरंत जो है उसका रोकने के लिए तत्काल रूप से प्रभाव करें, क्योंकि अगर आप विलंब करेंगे तो ये कीट दिन दुना रात चौगुना तेजी से बढ़ती है, राव के फसल को नष्ट कर देती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो ये तो हुई लत्तर वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन की बात। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, फूलों की व्यावसायिक खेती। भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संत।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, हम फसलों की बात करते हैं, दलहनी फसलों की बात करते हैं, धान्य फसलों की बात करते हैं, अनाज फसल की बात करते हैं, सब्जियों की बातें करते हैं, तरह तरह की फसलों की बातें करते हैं हम किसान भाई बहन। और एक बात हम यह भी बताते चले आपको कि इन फसलों के अतिरिक्त खेती करते हुए अगर हम व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए आमदनी का एक बेहतर स्रोत बन सकता है किसान बंधु। और इसमें किस प्रकार से फूलों की खेती में देख रेख हमें करने की आवश्यकता है, अभी बरसात का मौसम है, अभी हम कौन सी खेती कर सकते हैं, यहाँ की जलवायु क्या है, किस फूल के लिए बेहतर जलवायु है, यहाँ की मिट्टी किस फूल के लिए उपयुक्त है, और किस फूल की खेती अभी वर्तमान में की जा सकती है, और आने वाले समय में किसकी योजना आप बना सकते हैं, इन तमाम बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम।
1: सभी को मेरा जोहार।
0: फूलों की बात जहां तक आती है, अभी फूलों की खेती की क्या संभावना बनती है हमारे पलामू में, हमारे किसान भाई लोग

0: जतई गोबर ततई धान।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनोया सब भाई बहन मन के मनीष भाई कर जोहार और करण भाई राउर के हूँ जोहार।
0: आओ आओ मनीष भाई जोहार जोहार और मोर बड़ से हूँ सब सुनवाया मन के जोहार। बताई देवे खोजिला ई कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सभी डाले हैं
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान।

0: परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: और बताओ करण भाई, क्या हाल समाचार है?
5: अरे देखो, बरसात कर दिन है, बरसात कर दिन में तो सोबट हरियरी हरियर दिसेला है नी, और सावन कर महीना हूँ है, और खेत मन हो लहलहात है, रोफा डोभा कर काम हो चलत है, तो जीव जहान तो बढ़िया है और बढ़िया रखे चाहिए, कैसा नहीं रोरे?
4: मैं हूँ बढ़िया हूँ, लेकिन देखो नी, अखन पानी बरसा का मौसम है और इस मौसम में मुरुक आदमी मन कर तबियत हूँ खराब होत है, सेले आदमी मन के अपन जीव जहान कर ध्यान हूँ रखे के।
5: एकदम सही कहती, सर्दी खोखी मन हो जाएला और मौसम बदलेला तो तबियत मन हूँ गड़बड़ाबे करेला, और स्वस्थ मस्त रह के लिए मनीष भाई देखो पैसा कौड़ी कर बहुत दरकार पड़ेला है नी।
4: एकदम
5: देखो नी, अखन तो समय बदलत है, जमाना बदलत है, और पैसा रही तो देखो जीव जहान हूँ देखो खुशहाल रहेला, और अखन तो हमरे मन सूचना कर युग में जियत है, सब बट सूचना और सूचना भरल है, हमरे मन अपन खेती बाड़ी कर जो तौर तरीका है वो केहू हमरे मन इस सूचना कर युग में बदल के बढ़िया कचिया कमाई सकेला। संगे संग देखो नी, आ तो वैज्ञानिक जमाना हूँ है नी, तो वैज्ञानिक जमाना में बहुत एकन जे खेती बाड़ी करे कर तरीका है सेहू बदल जाये, आधुनिक विधि कहली खेती बाड़ी करे कर तरीका, तो देखो इकर में हमरे मन आजकल जे देखत ही ड्रोन मन कर प्रयोग होवत है नी।
4: हाँ हाँ,
5: और इकर में आजकल देखेला बहुत एकन किसान मन इकर उपयोग करत है, तकनीक से खेती करत है, बूंद बूंद जे टपक सिंचाई विधि आहे इकेहू अपनाई है, इकर से का होत है नी कि पानी बहुत एकन बाचेला, और पोली हाउस चाहे ग्रीन हाउस केहू हमरे मन अपनाई के नी जे बेमौसम है उकर में खेती कर सकेला बढ़िया एकन। तो आशा करेला कि भाई बहन मन जे आधुनिक कृषि तकनीक आहे विधि आहे से के अपनाबे, और पुरना वाला जे है बेस आहे के तो लेके चले के चाहिए, लेकिन जेकर से हमरे के बहुत फायदा नहीं होवेला तो उके छोड़ के आगे जाए के चाहिए, और एखन नवा नवा कृषि यंत्र मन हूँ आवत है तो उकर हूँ उपयोग करके हमरे मन के अपन उपज के बढ़ाए आहे का
4: एकदम। और हमरे कर जे सरकार है भारत सरकार ओहो ई विधि के आधुनिक कृषि तकनीक के बढ़ावे ले बहुत प्रयासरत है, और कई गो ऐसा योजना चलाई के हमरे मन के मदद पहुँचाते है जेकर से आधुनिक कृषि तकनीक के बढ़ावा भेटाते।
5: जैसे का योजना है?
4: देखो इसने योजना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ड्रोन सब्सिडी योजना और कृषि संरचना कोष, यह तरीका योजना है जेके भारत सरकार चलाते।
5: एकदम सही कहते, और एखन तो देखो मनीष भाई सब किसान मन कर हाथ में स्मार्टफोन है और AI कर जमाना है, तो AI कर प्रयोग करके मौसम कर हाल के जान सके ना, चाहे अपन खेती में का बीमारी होवत थे उके हूँ जान सके ना, और का दवाई देवे का है, कौन बड़ा खेती करे का है, कैसन करे का है, कम पानी आवत है तो कम लागत कर कौन कौन बिहन मना है किसिम मना है उके लगाए के, तो इकर जानकारी हूँ AI कर माध्यम से भेटा थे, तो हमरे मन की AI कर हूँ प्रयोग करे चाहिए। एखन तो खरीफ है कर समय है, और ई मौसम में हूँ सब्जी फसल मन कर बहुत खेती करल जाएला है नी, हमरे का राज्य में हूँ सब्जी कर खेती तो अब बहुते करल जाएला है नी।
4: हाँ हाँ।
5: और बाहरे मन हो जाएला सब्जी झारखंड राज्य से बाहरे, तो किसान मन बहुत आगे बढ़त है, तो मैं देखू अगर उमन और उन्नत किस्म मन के लगाबो है होलुकर से उमन के फायदा होवी है नी।
4: एकदम, तो हमरे मन कर उन्नत किस्म कर लगाए कर बारे में जाने के चाहिए, कखन उके लगाए के का तरीके के पोषक तत्व मन देवे के उकर बारे में जाने के चाहिए।
5: एकदम सही कहली, तो आज हमरे मन चलू आज की बात में खरीफ सब्जी फसल कर उन्नत किस्म का आहे और इके कैसे लगाल जाएला, देखभाल कैसे करल जाएला, इकर बारे में हमरे मन जानेला, बताते हैं डॉक्टर BK झा और इनकर से गोठियाई हैं प्रभुशरण।
4: चलो तब सुनीला।
6: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे खरीफ सब्जी फसलों के बारे में, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज जो हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं वो हैं डॉक्टर बाल कृष्ण झा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक उद्यान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था रांची केंद्र में ये कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
7: किसान भाइयों जोहार।
6: सबसे पहले तो ये बताएं कि खरीफ में कौन कौन सी प्रमुख सब्जियां जो झारखंड में उगाई जा सकती हैं?
7: किसान भाइयों, झारखंड के प्रदेश में अगर आप खरीफ के मौसम में कर रहे हैं तो जैसे प्रमुख सब्जियां हैं बैगन, टमाटर, फूलगोभी, लोबिया, भिंडी, फ्रेंच बीन, मिर्च, शिमला मिर्च, सोयाबीन, या इसके साथ साथ आप लतेदार सब्जियां जैसे कि कद्दू, करेला, नेनुआ, खीरा, तो इनकी भी आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं खरीफ के मौसम में।
6: तो इसके जब उन्नत प्रभेद अगर लगाए जाएंगे तो बेहतर उत्पादन हो सकता है, तो इन सब्जियों की उन्नत किस्म

0: में कौन कौन सी?
1: हाँ किसान भाइयों, खास करके जब आप सब्जियों की खेती करते हैं तो उसके उन्नत या संस्कृति किस्म पे आप जरूर ख्याल रखें। तो इसमें जैसे अगर आप टमाटर करना चाहते हैं, टमाटर की खेती, तो इसमें हमारे केंद्र से जो विकसित संकर किस्में हैं, जैसे स्वर्ण संपदा है, स्वर्ण विजय है, स्वर्ण समृद्धि है या स्वर्ण वैभव है, तो यह पूषा हाइब्रिड वन है, तो यह सबकी उपज काफी ज्यादा होती है। करीब 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास इसकी उपज होती है जो हमारी संकर किस्में होती है। जो हमारी ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज डेवलप है जैसे कि स्वर्ण विजया, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण वैभव, स्वर्ण नवीन, पूषा शीतल, तो इनकी क्या है कि उपज 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, तो ये आप हमारे यहाँ से ले भी सकते हैं। साथ में अगर जैसे आप बैगन की खेती करना चाहें तो बैगन में स्वर्ण अजय, स्वर्ण शक्ति, जिसकी उपज लगभग 650 से 750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, इसमें भी जैसे आपके पास चॉइस होती है कि आप जैसे स्वर्ण लालिमा जो हमारी किस्में विकसित है, या हमारे स्वर्ण वैभव, स्वर्ण नवीन है, पूषा शीतल, ये जो आपकी स्वर्ण श्री, स्वर्ण मणि, ये स्वर्ण प्रतिभा, ये सब जो बैगन की किस्में हैं, तो इसमें क्या है कि हमारी उपज भी अच्छी होती है। और जैसे कि उसमें गोला का या पर्ण अविलंब जो है ये आप लेंगे, तो इसमें क्या है कि लंबे साइज के, तो ये आपके चॉइस और मार्केट पे डिपेंड करती है कि आप किसान भाई कौन सी मार्केट प्रेफरेंस ज्यादा है वहां पे, तो उसका चयन करें। जैसे फूलगोभी में आप करना चाहें तो पूषा अरली जो हमारे तीनों मौसम में होती है, तो पूषा अरली, पूषा दीपाली, पूषा कातकी, पूषा सिंथेटिक, ये सब अच्छी हमारी किस्में हैं। मिर्च का लें तो पूषा ज्वाला, स्वर्ण प्रफुल्या हमारे यहाँ से विकसित हैं, काशी अनमोल, ये भी अच्छी इसकी उपज होती है, शिमला मिर्च, अर्का गौरव, अर्का मोहिनी। जैसे फ्रेंच बीन करना चाहें तो पोल टाइप में स्वर्ण लता है, अच्छी है, 120 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आती है। या जैसे भिंडी है तो अर्का अनामिका जो हमारी जैसे येलो वेन मोजैक होती है, पत्तियां आपकी किसान भाइयों पीली पड़ जाती है, तो ये रेसिस्टेंट वेराइटीज होती हैं, तो इसका भी आप कर सकते हैं। लोबिया में स्वर्ण मुकुट है, सोयाबीन में हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्वर्ण वसुंधरा किस्में विकसित हैं। जैसे पत्ता गोभी का लें तो पत्ता गोभी में आपका जैसे कि हमारा गोल्डन एकर है, प्राइड ऑफ इंडिया है, पूषा मुक्ता है, तो ये सब अच्छी है। और साथ में अगर लत्तेदार की सब्जियां करना चाह रहे हैं, जैसे आपका खीरा है, उसमें स्वर्ण सीतर हमारे यहाँ की विकसित है, करीब 250 से 350 क्विंटल प्रति उपज होती है। बॉटल गॉर्ड में जैसे कद्दू में जैसे अर्का बहार है या पूषा नवीन है, करेला में जैसे स्वर्ण यामिनी है, पूषा दो मौसमी है, नेनुआ में जैसे पूषा नसदार है या पूषा चिकनी, इनकी आप सफलतापूर्वक खेती जो है कर सकते हैं किस्मों को लेकर के।
2: एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जितने सब्जियों के नाम आपने गिनाए तो भूमि का चुनाव करने में क्या कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है?
1: बिल्कुल, खासकर किसान भाइयों जब आप खरीफ की सब्जियों की खेती कर रहे हैं कि आपकी जमीन जो है उर्वरक वाली हो, जिसमें जैव पदार्थ युक्त हो, या जैसे कि खरीफ मौसम में खास करके जल जमाव की समस्या होती है, तो आपके खेतों में जल जमाव ना हो, जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था हो, और साथ में आप किसान भाइयों ऐसा देखें कि जब आप बरसात होती है तो कभी कभी क्या होता है, एक बरसात, दो बरसात में काफी गैप हो जाता है, तो ऐसे केस में आपके पास सिंचाई की व्यवस्था होनी अनिवार्य हो जाती है ताकि आपकी फसल को कोई तरह के पानी की कमी महसूस ना हो।
2: खरीफ की सब्जियों की पौधशाला यानी नर्सरी, तो वो नर्सरी तैयार करने की क्या तैयारी करनी चाहिए उसके लिए?
1: किसान भाइयों खास करके जब आप सब्जियों खेती करने जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पौधशाला की जो आप तैयार करते हैं वो अच्छी पौधशाला में पौधे तैयार करेंगे, तो इसमें बीज को उपचार कर लेते हैं या फिर उसमें आप जो लगाने की विधियां जो होती है, तो उसमें क्या होते हैं आप ऐसे जगह का चुनाव करें जो कि जल जमाव ना हो और ऊंची स्थान हो, साथ में जल निकास की व्यवस्था हो, और खास करके इसमें जैसे आपके उर्वरक जैसे कि फार्मयार्ड मैन्योर जो हम कहते हैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि इससे क्या होता है, और जब आप क्यारियां बनाते हैं तो आपको कोशिश करें कि 1.25 मीटर तक की क्यारियां चौड़ी बनाएं और लंबी आपकी आवश्यकता अनुसार, ताकि दोनों तरफ से बैठ के उसमें से निराई गुड़ाई हम कर सकें, ताकि इससे ये होता है। और खासकर किसान भाइयों आजकल जो अब जैसे आप पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं तो उसमें क्या है कि अब जमीन में पौधे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, स्वस्थ पौधे तैयार करना चाहते हैं तो उसमें क्या आजकल प्लास्टिक की प्रोट्रे आ गई है, तो उसमें क्या जैसे कैविटीज अलग बनी होती है, जैसे कि जो छोटी कैविटी वाली होती है उसमें आप टमाटर है, बैगन है, फूलगोभी है, पत्ता गोभी, जिसके बीज बहुत छोटे होते हैं, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आप लत्तेदार सब्जियों की बीज तैयार करें उसमें बड़ी कैविटी वाली लेते हैं या पॉलीट्यूब में कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आप कोकोपीट लेते हैं और साथ में वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, दोनों की आधी मात्रा का सम्मिश्रण करते हैं और उसको फिर उससे हम मीडिया बनाते हैं, उससे हम फिर बीज की बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों खासकर जो आप प्रोट्रे की बात करते हैं इसमें कहीं भूमि, कहीं मिट्टी हम नहीं लेते हैं, तो इससे क्या होता है किसान भाइयों हमारी जो पौधशाला में पौधे तैयार होते हैं वो बिल्कुल जो कि जो बीज मान लीजिए अगर बीज से कोई जनित रोग है या मिट्टी से जनित रोग है तो वो इसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। तो आप अगर पौधशाला तैयार कर रहे हैं किसान भाइयों तो खास करके प्रोट्रे का मदद से आप पौधशाला तैयार करें, जो कि उन्नत विधि है और आजकल किसान भाइयों इसको अच्छे से कर भी रहे हैं।
2: तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाई इस पर जरूर ध्यान देंगे।
1: और दूसरी चीज़ कि जब भी आप बीज करते हैं तो उसकी जो बीजोपचार अवश्य कर लें
2: जी।
1: तो बीजोपचार में जैसे कि है आप किसान भाई को कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि हमारा बेबिस्टीन आती है या कैप्टान आती है, थायरम आती है,
2: इन सब चीज़ों
1: तो ये 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उससे बीज को उपचारित कर लें। तो इससे क्या होता है, बहुत से जो बीज जनित रोग होते हैं तो वो नहीं आते हैं किसान भाइयों।

0: खासकर इसमें आर्द्र गलन की समस्या रहती है। जैसे आप देखें किसान भाइयों, अगर आपने खेत में अगर लगाया हो, पौधशाला तैयार कर रहे हो, तो क्या होता है कि तने के पास से गलन शुरू हो जाता है।
1: जी जी,
0: तो वो उसको हम आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कहते हैं, आर्द्र गलन कहते हैं। तो इसको रोकथाम के लिए आप बीजोपचार जरूर करें, और साथ में जैसे ब्लैटॉक्स नाम की दवा आती है तो वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रेंचिंग भी साथ साथ करते रहें, तो इससे क्या होता है कि आपको आर्द्र गलन की बीमारी से छुटकारा, ताकि स्वस्थ पौधे आपके तैयार हो सके।
1: इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न ये है कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर, तो ये भी सीमा तय करनी बहुत जरूरी
0: है। जी जी बिल्कुल, इसमें सब्जियों की जो संतुलित मात्रा होती है उसके मुताबिक ही आप तैयार करें, ताकि अधिक भी बीज ना डालें और कम भी ना डालें। तो इसमें जैसे हम प्रति हेक्टेयर की बात करें, जो हमारा 100 × 100 मीटर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, तो उसके लिए हमें जैसे कि हाइब्रिड संकर किस्म की आप लेते हैं तो उसमें बीज हमारी आवश्यक, जैसे टमाटर है, बैगन है, इसमें करीब 250 से 300 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आप ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी लेते हैं तो उसमें क्या उसकी बीज रेट ज्यादा हो जाती है, उसमें जैसे 300 से 400 ग्राम प्रति से बैगन के लिए है या टमाटर के लिए, जैसे फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, इसमें 500 से 600 ग्राम जैसे आप फ्रेंच बीन लगा रहे हैं तो फ्रेंच बीन 60 से 70 किलो, जो भिंडी लगा रहे हैं तो 8 से 10 किलो, जैसे कि आप लोबिया 15 से 20 किलो, या आप लतेदार सब्जी लगा रहे हैं तो उसमें 2 से 2.5 किलो के आसपास आवश्यकता होती है।
1: और आपने बहुत अच्छा बताया कि इसमें मतलब दूरी वगैरह का भी ध्यान रखना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बीज अगर हाइब्रिड है तो उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है।
0: जी,
1: तो ये सब चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: हाँ किसान भाइयों, खास करके जैसे आपकी पौधशाला तैयार है या आपकी फसलें लगी हैं, तो अभी क्या है कि जैसे उसमें संतुलित मात्रा, जो अभी अगर बेसल देना हो तो जो खेत की तैयारी में डालते हैं तो उसमें उचित मात्रा में जैसे कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा डालनी चाहिए। और इसमें सब्जियों खेती में खास करके जो है, जो हमारी सरी गोबरी खाद है, उसकी मात्रा करीब 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। और साथ में जैसे वर्मी कंपोस्ट है, उसकी भी 2.5 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें, तो आपकी सब्जी में उत्पादन अच्छी मिलेगी। और साथ में क्या है कि खरपतवार निराकरण भी आप उसमें से करते रहें, ताकि आपकी फसल को पोषक तत्व की कंपटीशन हमारे खरपतवार से ना हो, तो इससे भी आपके पैदावार पे असर पड़ता है।
1: चलते चलते एक और प्रश्न कि जैसे कई किसान अपना फसल लगाते हैं, सब्जी उन्होंने लगाया और कई तरह के रोग उसमें हो जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जैसे
0: बिल्कुल।
1: पत्तों का पीला पड़ना या फिर उसमें जब फली आई तो उसमें रोग लग जाना, तो उनका नियंत्रण कैसे होगा?
0: खासकर किसान भाइयों, जैसे बरसात में आप देखें तो एक तो इसमें जो रोगें प्रमुख आती हैं, जैसे कि इसमें टमाटर बैगन की बात करें तो इसमें अगेती अंगमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो काले पड़ के और वो फिर पत्तियां सूख के गिरने लगती हैं। तो इस तरह के जो होते हैं तो उसमें क्या है कि नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 नाम की दवा आती है, तो उसको 2 ml/L के हिसाब से आप उसको कर लें। और साथ में जैसे इसमें किसान भाइयों, मुरझा रोग की समस्याएं बहुत रहती हैं, जैसे किसान भाई बहुत मायूस हो जाते हैं कि जब वो जैसे टमाटर हो, बैगन हो, मिर्च हो, शिमला मिर्च कोई भी लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले पत्तियां जो है ऊपर से सूखनी शुरू होती हैं और नीचे उसकी टूसी जो होती है वो भी झुक

0: तो भाई बहन मन, एखन हम रेमन सुनत रही खरीफ सब्जी फसल कर उन्नत किस्म का है और इके लगाए कर और देखभाल करे कर बारे में इके बतात रहे डॉक्टर बी के झा और इनकर से गोठियाए रहे प्रभु शरण।
1: बहुत नगद सुपर जानकारी रहे है नहीं
0: एकदम
1: रवरे हूँ यह तिर तने के मैं आसरा करो ना तने के लगाव की
0: एकदम लगा था भाई बहन मन और रवरे हूँ लगा थी नहीं।
1: हाँ कोशिश तो करल जाते देखो नी समय बदलत है तो हमरे के तो बदल के आए और उन्नत किस्म मन हूँ हमरे कर कृषि वैज्ञानिक मन बनाई बनाई के देवत है तो उकर प्रयोग करे के चाहिए तब नहीं जानब कि उपज कैसे होवत है। अरे हमरे तो खाली गोठियाते ही गीत गोविंद बठू हमरे मन के जाए के चाहिए काले की रोपा डोभा कर दिन चलत है और आज कर कर जे काम होवेला उकर में एकदम गीतकाई के माए बहन मन रोपा डोभा कर काम के निमरात है नहीं और पतो नहीं लागे ला कि थाइखी के नहीं थाइखी है नहीं
0: एकदम
1: खाली रवरी कहब कि गीतो सुनवाब तब
0: नागपुरी में गीत है चलो तब सुन लेवी लाई गीत के सुलोचना देवी और संगी मन कर गावल है।
2: लहाके कतगी सुंदा जीना बगाना हमा जीना तो बगाने गे हमा जीना तो बगाना हमर लगाते कतगी सुंदा सना खाना के फूलो निपार लहा सा लहा राय रे ए सना खाना के फूलो निपार लहा

0: 呀，撒把太的太的。
1: तो एखन हमरे मन नागपुरी में गीत सुनत रही, सुलोचना देवी और संगी मनकर गावल गीत रहे, बड़ा नगद गीत रहे। बाप रे बाप, इनकर जे बगीचा मनकर और गछ बुदा मनकर जे बखान रहे है नी, हमरे के एकदम पूर्णा पोरिया याद करवाई दिले, बहुत सुंदर
2: एकदम नगद गीत रहे।
1: और खेती करे के लिए कहे ना और बताना कि जैविक खेती से का फायदा है
2: एकदम। तो चलो कमल कुजूर से करल गोइट के सुन ले विला और इनकर से रावरे गोठियाई।
3: हमारे साथ एक किसान है, नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
4: मैं कमल कुजूर रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड से हूँ।
3: कमल भाई, आपने कहा कि आप बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत गांव से आते हैं और आप जैविक खेती पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की बात है, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी ये सब चीज की जा रही है। तो जैविक खेती के लिए आप किसानों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, क्या किसानों का रुझान दिखता है?
4: जैविक खेती के प्रति लोगों का रुझान बिल्कुल है, लेकिन ये चीज जो है किसान लोग अभी तुरंत ही इसको शुरुआत करने में थोड़ा सा दुविधा में है, क्योंकि जैविक खेती एक हम लोग करेंगे, जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं खेती होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो लोग दुविधा में हैं। लेकिन हम लोग ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जैविक खाद का प्रयोग कीजिए और अगर फसल का उत्पादन थोड़ा कम होने जैसा लगता है तो आप हल्का मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बर्मी कंपोस्ट में जैसे हम लोग पिट तैयार करवा रहे हैं किसान लोग का ही सहयोग से, वे लोग पिट तैयार करते हैं, उसके बाद 15 से महीना दिन का जो पुराना गोबर है उसको हम लोग पिट में डलवाते हैं, उसके बाद हम लोग केचुआ उपलब्ध कराते हैं और उसमें केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ छोड़ने के बाद उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से उसको निकालना है, कैसे उसका देख रेख करना है, उसके बारे में बताते

0: करते हैं। साथ ही साथ जैसे बरसात के दिन में जितने भी हरा घास फूस है उसको जमा करके गड्ढा खोद के उसको कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए बारे भी हम लोग बता रहे हैं।
1: कहाँ से वो लेंगे? ऐसा ही तो जो खेत में मिलता है वो केचुआ तो नहीं डाला जाता है कि डाला जाता है?
0: केचुआ जो है उन्नत किस्म का केचुआ है, ये रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है मुराबादी में वहाँ से लिया जा सकता है, या तो अनगड़ा में उसका फार्म है रामकृष्ण मिशन का वहाँ से मिलता है। ये दो प्रकार का होता है, जो टीडा फोटीडा कहा जाता है केचुआ का नाम। केचुआ को रखने के लिए लाल किस्म की एक छोटी चिट्टी होती है, वो चिट्टी उसका बड़ा दुश्मन है, इसलिए चिट्टी उसमें केचुआ पीट में प्रवेश ना करे, नहीं तो अगर प्रवेश कर जाएगी चिट्टी तो केचुआ को पकड़ के ले जाता है चिट्टी। तो उसके लिए जो केचुआ पीट बनता है तो पीठ का किनारे किनारे भाग में थोड़ा सा जो गड्ढा किया जाता है उसमें पानी रखा जाता है, ताकि उस पानी से पार होके एसिटी ना जा सके केचुआ पीठ में।
1: प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है, और अगर जरूरी है इसको बनाने के लिए?
2: मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
3: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
4: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
5: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
6: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
7: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
6: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
7: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
6: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
8: तो भाई बहन मन बताए खोजिला, ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
9: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर। तो किसान वाणी कार्यक्रम से रावर मनक रेडियो संगी करण भाई और
8: मनीष भाई के देव विदा।
9: जोहार।

ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लत्तर वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन के बारे में। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी लत्तर वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे कद्दू, लौकी, तोरी, खीरा, में कीट प्रबंधन के लिए बीजों को बोने से पहले फफूंद नाशक से उपचारित करना आवश्यक है। खेत की गहरी जुताई करें और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम के तेल या फेरोमोन ट्रैप का उपयोग अवश्य करें। किसान भाई, इसमें जो लगने वाले जो लत्तर वर्गीय सब्जी हैं, इसमें जो मुख्य कीट हैं उसमें है फल मक्खी। यह कीट युवा फलों में छेद करके अंडे देता है जिससे फल सड़ जाते हैं। दूसरा प्रमुख है लाल सुंडी, जिसको हम लोग रेड पंपकिन बीटल के नाम से भी जानते हैं। यह पत्तियों को कुतर कर छेद करती है और पौधों को नुकसान पहुंचाती है। चेपा या माहू, ये कोमल अंगों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं। इनके प्रबंधन के लिए बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करें ताकि छुपे हुए जो कीट व अंडे हैं वो धूप में नष्ट हो जाएं। बुआई से पहले बीजों को सही मात्रा में फफूंदनाशक या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। ग्रसित पत्तियों और फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। खेत में प्रकाश प्रपंच लगाएं।

नीम आधारित कीटनाशक, जैसे नीम का तेल हुआ, उसका छिड़काव करें। मित्र कीटों और पक्षियों को बढ़ावा दें। अधिक प्रकोप होने पर सुरक्षित कीटनाशकों की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें। तो किसान भाई, अगर आप ऐसा

उनके सही देखभाल कर सकते हैं और उनका लगने वाले जो कीट व्याधि हैं उसका आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाई कि जो सब्जियों का जो कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं इसका एक बड़ा समूह है जिसमें लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा सभी शामिल हैं, जिसकी बड़े पैमाने पर हमारे देश भर में इसकी खेती की जाती है। यह बहुत ही लोकप्रिय और अत्यधिक लाभकारी सब्जियां हैं जिनकी खेती ज़्यादातर गर्मियों तथा खरीफ मौसम के दौरान की जाती है। हमारे देश में कद्दू वर्गीय सब्जियों का हिस्सा कुल सब्जी उत्पादन का 5.6% तथा उत्पादकता लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर है, जो दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। कीटों व रोगों तथा सूत्रकृमियों का बढ़ता प्रभाव संभावित उत्पादन के लिए प्रमुख अवरोधक हैं, जिसके कारण अक्सर उपज में भारी नुकसान होता है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। मौसम या बेमौसम की गई खेती के कारण विभिन्न नाशी जीवों से 20-25% तक आर्थिक नुकसान होता है। साल भर के विभिन्न मौसम के दौरान की गई कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के कारण कीटों, रोगों और सूत्रकृमियों को अस्थायीकरण तथा गुणन के लिए सतत और प्रचुर मात्रा में भोजन की आपूर्ति हो जाती है। नासी जीवों के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए किसान रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग पर अत्यधिक निर्भर हो रहे हैं एवं सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा एक फसल मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में 10-15 छिड़काव करना आम प्रचलन है। इन परिदृश्यों में कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों की मात्रा उच्च स्तर पर पाई जा रही है, जो केवल उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं खतरनाक साबित हो रही है बल्कि निर्यात की जो गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रही है। रसायनों पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता, पुनरुत्थान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के अतिरिक्त किसानों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव देखे जा रहे हैं, जो नासी जीवों तथा मित्र कीटों के बीच नाजुक संतुलन को प्रभावित करता है। किसान भाई, इन सभी समस्याओं को कम करने और किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रमुख कद्दू वर्गीय फसलों के लिए एकीकृत नासी जीव प्रबंधन रणनीति विकसित एवं प्रमाणित की गई है, जो कीट एवं रोग रोकथाम हेतु काफ़ी प्रभावी है। किसान भाई, हम जैसे अभी बात कर रहे थे लाल पंपकिन बीटल के लिए, तो यह लौकी का प्रमुख कीट है और कद्दू, ककड़ी तथा तरबूज को भी यह प्रभावित करता है। यह पत्ते, फूलों की कलियों और फूलों को लगातार खाती है। अंकुर चरण में इसके द्वारा हुआ नुकसान 75% तक पहुंच सकता है। मृदा में उपस्थित भृंग जड़ों तथा भूमिगत तनों को खाते हैं, जबकि वयस्क जो है बीज, पत्र व पत्तों को खाते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है तथा अंततः पौधे मर जाते हैं। भृंग मलाईदार सफ़ेद, जबकि वयस्क चमकीले नारंगी लाल होते हैं। पर्ण सुरंगक, यह वयस्क पीले रंग के होते हैं, जबकि लार्वे सूक्ष्म बिना पैर के और नारंगी पीले रंग के होते हैं। ये पत्ती की सुरंगों में प्यूपा बनाते हैं। लार्वे पत्तियों में सांप के आकार की सुरंगें बनाकर अंदर से खाते हैं। इनका अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। ककड़ी कीट, यह जो है सुंडी पत्तियों के क्लोरोफिल भाग को कुतर के इकट्ठा करके उन्हें जाल बद्ध कर अंदर से खाती है। यह फूलों को भी खाती है तथा

विकासशील फल में छेद कर देती है। लार्वे गहरे हरे रंग के होते हैं एवं इनके शरीर के दोनों तरफ सफ़ेद धारी होती है। वयस्क के पंख सफ़ेद रंग के होते हैं तथा किनारों पर गहरे रंग के चौड़े धब्बे होते हैं। यह अंडे ज़्यादातर पत्तियों की निचली सतह पर अकेले या छोटे समूहों में देते हैं। लतरवर्गियों में प्रमुख एक है फल मक्खी। यह भी कीट जो है किसान भाई, यह हर जगह पाई जाती है एवं जुलाई से सितंबर माह के दौरान अधिक सक्रिय होती है। यह सभी कद्दू वर्गीय फसलों विशेषकर करेला तथा तरबूज को हानि पहुंचाती है। इसका जो है मादा सफ़ेद सिगार के आकार के अंडे कोमल नरम फलों से 2 से 4 मिलीमीटर अंदर घुसाती है। नवजात शिशु फलों को अंदर से खा जाते हैं एवं गैलरी बनाते हैं जिस कारण फल सड़ जाते हैं तथा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। छेद कवक बैक्टीरिया के लिए प्रवेश बिंदु का काम करता है। प्यूपीकरण मृदा में सतह से 0.5 से 15 सेंटीमीटर नीचे होता है। दूसरा, अगर हम किसान भाई बात करें कि जो हम लोग जैविक जो हम लोग अगर जैविक का उपयोग करें खेती में जैविक कीटनाशी का, तो यह बहुत ही अच्छा है और हम लोग कोशिश करें कि रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को समाप्त करें, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जो हमारा जल स्रोत है वह भी प्रदूषित होता है। किसान भाई, अब हम बात करेंगे हड्डा बीटल। यह मामूली कीट है जो अगस्त से अक्टूबर माह के दौरान सक्रिय होता है। लार्वा तथा वयस्क पत्तियों की ऊपरी सतह को खाते हैं। यह पत्ती के सिराओं के बीच में से खाते हैं तथा कभी कभी सिरा मध्य भाग से पूर्णतया खाली हो जाते हैं। पत्ते फीते की तरह दिखते हैं और भूरे रंग के होकर सूखकर गिर जाते हैं। इस प्रकार पौधा पूरी तरह से कंकाल के रूप में आ जाता है। सफ़ेद मक्खी यह करेला तथा लौकी का प्रमुख कीट है। अभ्रक व वयस्क दोनों पौधों का रस मुख्य रूप से पत्तियों के निचले भाग से चूसते हैं तथा मधुरस स्रावित करते हैं, जिससे पत्तियों के ऊपर काली फफूंद विकसित हो जाती है, जिसके कारण पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। इनके भक्षण द्वारा हुए प्रत्यक्ष नुकसान के अलावा यह वायरल रोगों के वाहक के रूप में भी काम करते हैं। तो कहने का मतलब है किसान भाई कि अगर आप लतरवर्गीय सब्जियों की सही देखभाल करते हैं और उसका सही अर्थ में प्रबंधन करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह सब्जियां अत्यधिक फायदे देने वाली हैं, इसका बाज़ार में अच्छा मूल्य भी मिलता है। तो यह तो बात हुई लतरवर्गीय सब्जियों में कीट एवं प्रबंधन के बारे में। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, फूलों की व्यावसायिक खेती। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर रमेश कुमार, कृषि विशेषज्ञ चियाकी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।

0: खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, हम फसलों की बात करते हैं, दलहनी फसलों की बात करते हैं, धान्य फसलों की बात करते हैं, अनाज फसल की बात करते हैं, सब्जियों की बातें करते हैं, तरह तरह की फसलों की बातें करते हैं हम किसान भाई बहन। और एक बात हम यह भी बताते चले आपको कि इन फसलों के अतिरिक्त खेती करते हुए अगर हम व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए आमदनी का एक बेहतर स्रोत बन सकता है किसान बंधु। और इसमें किस प्रकार से फूलों की खेती में देख रेख हमें करने की आवश्यकता है, अभी बरसात का मौसम है, अभी हम कौन सी खेती कर सकते हैं, यहाँ की जलवायु क्या है, किस फूल के लिए बेहतर जलवायु है, यहाँ की मिट्टी किस फूल के लिए उपयुक्त है, और किस फूल की खेती अभी वर्तमान में की जा सकती है, और आने वाले समय में किसकी योजना आप बना सकते हैं, इन तमाम बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम।
1: सभी को मेरा जोहार।
0: फूलों की बात जहां तक आती है, अभी फूलों की खेती की क्या संभावना बनती है, हमारे पलामू में हमारे किसान भाई लोग किस तरह से इसकी खेती से लाभ कमा सकते हैं?
1: आज के इस बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि कृषक बंधु जो खाद्यान्न फसल के साथ साग सब्जी की खेती कर रहे हैं बृहद पैमाने पर, उसके साथ साथ

0: अगर वो फूलों की खेती करते हैं तो इससे भी एक अच्छा आमदनी उन्हें प्राप्त हो सकता है। ऐसे पलामू के क्षेत्रों में जैसा मैंने भ्रमण किया है तो पाया है कि यहाँ फूलों की खेती जो है मतलब नाम मात्र का है, लोग अपने बाड़ी में थोड़ा बहुत लगा देते हैं, व्यावसायिक रूप से करते नहीं हैं।
1: जी
0: जैसा कि हम जानते हैं कि फूल जो है जितना भी आप हमारे टाउन एरिया में चाहे और झारखंड में जितना भी है सब सप्लाई जो है दूसरे स्टेट से हो रहा है। अगर हमारे यहाँ के जो नए लड़के लोग जो बाहर कमाने जा रहे हैं अगर उस व्यवसाय में फूलों की खेती पर अगर अच्छा तरह से ध्यान दें तो ये जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और परिवार का भरण पोषण का एक बहुत बड़ा साधन होगा।
1: बन सकता है जी।
0: जी जी हाँ, और ऐसा देखा गया कि फूल की खेती जो है हर एक तरह का फूल यहाँ किया जा सकता है,
1: जी
0: लेकिन है कि क्या कि बहुत सारा फूल जो है उसका एक ठंडा में होता है, कुछ गर्मी में होता है, कुछ बरसात में होता है। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि एक फूल जो कॉमन फूल है गेंदा का फूल जो कि हमारे यहाँ बृहद पैमाने पर थ्रू आउट द ईयर सालों भर किया जा सकता है और इसका भी मार्केट जो है बहुत अच्छा है।
1: अच्छा
0: इसके साथ हम रजनीगंधा कर सकते हैं, जरबेरा कर सकते हैं, ग्लेडियोलस कर सकते हैं, एस्टर कर सकते हैं, कार्नेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एस्टर, ग्लेडियोलस, जरबेरा, कार्नेशन ये सब जो बात करें ठंडे का समय का है।
1: अच्छा
0: लेकिन अगर अभी किसान करना चाहते हैं, कुछ लोग अगर जिनका ज़मीन जो है ऐसा है जिनका मिट्टी जो है दोमट मिट्टी हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, ज़्यादा काला वाला नहीं हो, तो वैसा मतलब हार्ड हार्ड नहीं होना, इसी के लिए ज़रा हल्का मिट्टी चाहिए और हमारा कार्बनिक से प्रचुर मात्रा में पाया जाए
1: जी।
0: तो उस तरह से, नहीं तो उसको हम लोग खाद का मात्रा के साथ उसको हम लोग इम्प्रूव करके उसमें खेती कर सकते हैं। तो हमारा एक कहना रहेगा जैसे गेंदा का फूल, सभी लोग जानते हैं गेंदा क्या है, गेंदा देख भी रहे हैं और लोग जाते हैं मंदिर में तो खरीद के फूल भी चढ़ाते हैं,
1: जी।
0: तो इसमें यही
1: अब
0: का
1: सालों भर ये
0: सालों भर खेती
1: इसकी
0: की जा
1: खेती
0: सकती
1: की
0: है।
1: जा सकती।
0: तो गेंदा एक ऐसा फूल है जिसका कि सालों भर खेती बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अगर आप खेती फूलों की करने जा रहे हैं तो गेंदा और रजनीगंधा
1: जी
0: जो कि हमारे क्षेत्र में बरसात में अच्छा से हो जाएगा। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा किसानों को कि गेंदा जो आप लगाना चाहते हैं तो मिट्टी आपका रहेगा प्रश्न कि कैसा मिट्टी में होता है, तो इसी के लिए जो है हमारा दोमट मिट्टी जो है बहुत ही उपयुक्त है। दोमट मिट्टी और ऐसा मिट्टी जिसका कि पीएच जो है हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब लगभग 7 के करीब होना चाहिए। अगर मानिए थोड़ा अम्लीय है भी तो उसमें चूना जो है हम लोग 3 से 4 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर डालकर उसको उपचारित करने के पश्चात लगाएंगे तो वहाँ भी हमारा हर एक तरह का फसल जो है हो जाएगा।
1: जी
0: तो गेंदा में अब ये बात आती है कि इसका खेती कैसे करें, तो पहले जैसे अन्य फसलों की खेती करते हैं उसी तरह खेत की जुताई जो है कम से कम 2-3 बार कर लें। और इसके लिए जो है आप हम जानते हैं गेंदा 2 तरह का होता है, एक बड़ा गेंदा, एक छोटा गेंदा।
1: जी
0: तो इसको जो है साइंटिफिक वे में जो है दो भाग में दो नाम से जाना जाता है, एक अफ्रीकन गेंदा और दूसरा फ्रेंच गेंदा। तो
1: अच्छा
0: अफ्रीकन गेंदा वैसा गेंदा है जिसका फूल का साइज बड़ा होता है और फ्रेंच गेंदा वैसा है जिसका फूल का साइज छोटा छोटा
1: छोटा होता है
0: होता है।
1: जी।
0: तो अब उसमें प्रभेद जो है तो हम लोग जैसे कि बड़ा गेंदा का करने जा रहे हैं तो उसमें लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, ये वैरायटी जो है आप लगा सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसके साथ साथ जो है आप छोटे फूल में जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपको रस्टी रेड हुआ, उसके बाद आपका हमारा एक वैरायटी है रस्टी रेड के अलावा टीना और अन्य वैरायटी, उसको आप जो है बृहद पैमाने पर
1: कर सकते
0: कर सकते हैं। तो लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, उसके साथ पूसा नारंगी या पूसा ऑरेंज, ऐसा
1: अच्छा
0: वैरायटी जो बृहद बड़ा फूल है जिसका कि माला बनता है। तो
1: अच्छा
0: हम मैं किसानों को ये कहूँगा कि जो साइज में बड़ा है और अगर पूजा के लिए भी लगाना तो छोटा फूल दोनों को मिक्स करके लगाएं जिससे कि आप दोनों को फूल से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: तो खेत की जुताई करने के पश्चात जो मेरे द्वारा बताया गया परभेद था उसका बीज को मंगा लें और इसको जो है हम लोग 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 किलो बीज लगता है।
1: अच्छा
0: जो किसान जरा सक्षम है तो हम तो कहेंगे कि इसको जरा उपचारित कर लें बीज को भी, तो
1: अच्छा
0: कहेंगे कि गेंदा का बीज का क्या उपचारित कैसे उपचार होगा। तो इसको उपचार जो है दवा से न करके इसको जो उपचार हम लोग करेंगे एक कल्चर आता है
1: अच्छा
0: जो कि फफूंदी है, तो इस फफूंद का नाम है एजो स्पाइरिलम।
1: अच्छा
0: इसका जो है 200 ग्राम लिए एजो स्पाइरिलम को और उसमें 50 ग्राम मार डाल दिए और
1: अच्छा
0: उसको अच्छा तरह से मिलाने के बाद 1.5 किलो बीज मिलाकर उसमें मिलाकर
1: जी
0: और उसको थोड़ा फैलाकर छोड़ दिए 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जो है तैयार पौधशाला में बराबर कहा जाता है तैयार पौधशाला, ऐसे नहीं कि जैसे मन तैसे छीट दिए उसको लाइन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करीब 1 से 1.5 इंची कुराई जमीन से लकीर देते हुए उसको गहराई में बीज को गिराएं और उस पर भुरभुरा खाद से उसको

0: उसके बाद ये जो है आपका तैयार हो जाता है करीब 4 सप्ताह में।
1: अच्छा,
0: तो समझिए कि 25 से 30 दिन में तैयार हो गया, तो आप इसको रोप सकते हैं। आप पूछेंगे रोपने का समय क्या होता है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि वर्ष में 3 बार कर सकते हैं, जून जुलाई, सितंबर, जनवरी फरवरी।
1: अच्छा,
0: नवंबर दिसंबर इसलिए नहीं लेते हैं कि उस समय जो है जारा ज़्यादा होता है, ज़्यादा जारा होने से अगर जो आप पौधा लगाते भी हैं तो उसका ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ के और होता है उसके बाद कीड़ा उड़ा लगने का भी ज़्यादा संभावना होता है। तो अगर आप अभी किसान लगाना चाहते हैं तो अभी किसान अभी समय हमारा है, उसमें मेरे गया बताए गए प्रभेद को ले लें और लेने के पश्चात इसको अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो इसको लगाने का जो दूरी होगा 45x20 अगर गेंदा लगा रहे हैं तो इसको 45x20 सेंटीमीटर पर लगाएं, और लगाने से पहले खाद डालना है। तो इसका खाद का जो अनुशंसित मात्रा होगा 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 60 kg पोटास।
1: अच्छा,
0: तो इसका जो है आपका नाइट्रोजन जो है उसको हमको 3 भाग में देना है, मानिए कि 33-33-33 किलो बांट दिए, तो 33 किलो जो है लास्ट जो खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय डाल दें, और रेस्ट टू डोज जो बच रहा है आपका उसको 30 दिन पर और 60 दिन पर डालें
1: जी,
0: कोराई करके
1: जी।
0: जिसमें 30 दिन के बाद जो डालने जा रहे हैं तो थोड़ा निकोनी कर दें जैसे कि खरपतवार निकल जाए, उसके बाद खाद डालें और मट्टी चढ़ा दें पौधे पर
1: जी, जी।
0: और इसमें एक विशेष ध्यान देना है कि जब पौधा हमारा बिजरा तैयार होने के बाद जब लगा दें, लगाने के बाद 15-20 सेंटीमीटर कहने का मतलब 30 दिन का 25 से 30 दिन का हो जाए तो उसका ऊपर का शीर्ष भाग को हम लोग निपिंग कर देते हैं। निपिंग करने का मतलब उसका कलिका को ऊपर वाला कलिका को काट देते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: काटने का मेन मकसद ये है कि ब्रांच ज़्यादा निकले,
1: ज़्यादा निकले।
0: अब ब्रांच जब हमारा जो साइड ब्रांच निकलने लगेगा वो भी अगर हमारा जब 6 इंच का हो जाता है तो उसका भी निपिंग कर दें, उसका शीर्ष भाग को तोड़ दें।
1: अच्छा अच्छा,
0: जिससे कि एक कैनोपी तैयार होगा, पौधे का एक विकास संरचना बनेगा, उसमें फूल ज़्यादा आएगा।
1: अच्छा,
0: अगर ऐसे डायरेक्ट आप छोड़ देते हैं और फूल आने लगता है तो ब्रांच नहीं बनने के चलते फूल कम आता है।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद जो है आप अगर इसमें अब रोग है तो रोग में जैसे कि कीड़ा जो लगता है और बीमारी लगता है, तो कीड़ा अगर लग रहा है तो फिप्रोनिल दवा आता है, इसका जो है 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो कीड़ा का निदान हो जाएगा। अगर वो नहीं दवा है तो इमिडाक्लोरोपीड है, 1 से 1.5 ml दवा है, मिलाकर छिड़काव करेंगे आ जाएगा। मानिए कि कोई रोग लग गया है, जैसे कि आप उसका पौधे में गलन होने लगा, पौधा जो है उस पत्ते के ऊपर धब्बा आ रहा है, तो उसमें जो है आपको कार्बेंडाजिम दवा हुआ है, चाहे ब्लाइटॉक्स दवा हुआ, अगर गलन है तो ब्लाइटॉक्स डाल देंगे 3 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर ऐसी पौधे पर धब्बा आ रहा है तो कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो इससे आप निदान पा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसके साथ साथ जो है अगर इसका उपज जो है तो छोटा वाला जो हमारा ये होता है गेंदा, उसका उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
1: अच्छा,
0: लेकिन बड़ा वाला गेंदा जो यही है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो आप अगर आप इस्टीमेट कीजिए कि अगर आप अपने खेत से 20 रुपया, आप एक साधारण सा सोचिए ना कि आप जब दिवाली वाली में माला खरीदने जाते हैं, दुर्गा पूजा में माला खरीदने जाते हैं तो मिनिमम रेट रहेगा तो 30 रुपया, नहीं तो अगर बाजार में उपलब्धता नहीं है, अगर बाहर से कम ही माला आया है, चाहे किसी तरह नहीं होने से 50 से 60 रुपया 70 रुपया में एक छोटा सा माला देता है, तो समझिए कि अगर अन्य फसलों की तुलना करें तो इसमें इनकम ज़्यादा है। किसान जो है आसानी से 2 से 3 टाइम ज़्यादा इसमें कमाई कर सकते हैं। उसके बाद रजनीगंधा हुआ, रजनीगंधा भी बरसात में लगाया जा सकता है, जून जुलाई लगाने का अच्छा सीजन है।
1: और ये कब तक आएगा इसका मैंने फल?
0: हाँ, फूल ये जो है अगर गेंदा लगाए हैं तो 60 दिन से फूल देना शुरू कर देगा।
1: अच्छा,
0: और ये रजनीगंधा लगाए हैं तो ये 80 से 90 दिन के बीच में शुरू कर देगा
1: और फिर लगातार देगा,
0: वो लगातार देगा, वो 2 साल तक आप फूल ले सकते हैं रजनीगंधा में।
1: अच्छा,
0: है ना,
1: उसके बाद
0: जो है फिर आपको नया ये करना होगा
1: रजनीगंधा।
0: तो रजनीगंधा का कॉर्म्स लगाया जाता है, उसके अंदर प्याज टाइप का बैठता है नीचे जड़ के पास।
1: अच्छा,
0: उसका जो है वेट होना चाहिए कम से कम, जो हम लगा रहे हैं कि व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं, हमारा अच्छा उत्पादन मिले, तो 25 से 30 ग्राम का कॉर्म्स जो है उसको हम लोग लेते हैं। इस कॉर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, बेविस्टीन या कार्बेंडाजिम का 2% घोल, मतलब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर, और उसका कॉर्म्स जो है चाहे उसको बल्ब्स कहिए, प्याज जैसा होता है, इसको पानी में डाल के आधा घंटा छोड़ देते हैं।
1: अच्छा,
0: दवा से इसलिए कि उसका बीज उपचार हो रहा है
1: जी।
0: इस बीज उपचार करने के बाद इसको छाया में रख देते हैं, छाया में जब हमारा सूख जाता है उसके बाद उसको हम लोग इसका जो है लाइन से लगाते हैं, तो इसका लगाने का जो दूरी होगा वो होगा 40x20 सेंटीमीटर।
1: अच्छा,
0: और इसको हम लोग लगाएंगे तो करीब 1 हेक्टेयर में हमारा पौधे का संख्या जो है 1,15,000 से 20,000 पौधा जो है हमारा 1 हेक्टेयर में एकोमोडेट हो जाता है।
1: वाह,
0: है ना। और उसमें भी लगाने के पहले अगर खेत का जैसा मैंने गेंदा का बताया उसी तरह इसमें भी खेत की जुताई करने के बाद इसमें खाद का मात्रा जरा बढ़ा दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: जैसे वहाँ बोले 100-60-60 तो यहाँ देना है 150 किलो नाइट्रोजन।

0: और फास्फोरस जो है हमारा 75 kg, पोटास 75 kg।
1: अच्छा, गुलाब की बात हम संक्षिप्त में करना चाहते
0: हाँ, गुलाब के लिए अभी सीजन नहीं है, इसी के लिए जारा में अक्टूबर में हमको तत्पर होना होगा
1: हैं। अच्छा
0: गुलाब को लगाने के लिए। गुलाब का जो है हमारे यहाँ दो तरह का है, जैसे कि एक आप लोग देखते होंगे जो अभी आप लोग मार्केट में लेने जाते हैं, तो एक मतलब कि जो कोट उट में लोग लगाते हैं,
1: उस
0: चाहे
1: तरह
0: किसी
1: का
0: को गिफ्ट
1: छोटा
0: देते हैं
1: सा।
0: छोटा वाला, उसको कहते हैं डच रोज।
1: अच्छा
0: ये डच रोज जो है इसी के लिए पोली हाउस जरूरी है,
1: अच्छा
0: और ये सब जो भी हम रजनीगंधा और गेंदा बोले ये
1: वो
0: ओपन
1: कहीं भी।
0: कंडीशन में भी आराम से हो जाएगा। तो अगर आप संरचना बना लेते हैं उसके बाद खेती करते हैं, तो उससे आप जो है हमारे KVK चाहे ZRS में आकर संपर्क करके आप जो है इसको भी खेती कर सकते हैं। तो रजनीगंधा भी ऐसा फ्लावर है जिससे कि आप अगर प्रति हेक्टेयर देखें तो आपका उपज जो है, अगर आप फूल बेच रहे हैं तो करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सिंह जैसा मैंने रजनीगंधा के संदर्भ में बताया, तो रजनीगंधा के में भी दो तरह का फूल होता है, एक होता है सिंगल फूल आता है पौधे पर।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, फूलों की व्यावसायिक खेती। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर रमेश कुमार, कृषि विशेषज्ञ चिया की पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे साथी भाई संतोष कुमार। अब मौसम की बारी। आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 92%, जबकि शाम की आर्द्रता 77% दर्ज की गई। वर्षापात 0.2 मिलीमीटर। इसी के साथ ही हमारा आज का ग्रामीण सभा समाप्त होता है। नमस्कार।
3: gov.in।
4: हर घर सूर्य घर,
5: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
6: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
7: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर, दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
6: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
6: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
7: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर, दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
6: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में आज विधानसभा का मॉनसून सत्र रहा हंगामेदार। मुख्यमंत्री ने कहा, टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की होगी जांच। जेपीएससी और जेएसएससी समेत कई परीक्षाओं में अनियमितता का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में भाजपा द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का रहा मिलाजुला असर। विधानसभा परिसर में आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक करना है जरूरी। पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना सोनगर रेलखंड पर मालगाड़ी के 11 डिब्बे बेपटरी, परिचालन घंटों प्रभावित। और पुणे में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा। 12 से 23 अगस्त तक टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी टीम। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज छात्र आंदोलन के मुद्दे पर हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

0: सदन में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार TDPL द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच कराने के लिए तैयार है।
1: 11-13 JPSC और ABP ये सभी परीक्षाएं बीती मेंस हो चुके हैं कानूनी परीक्षा के तहत आती है और TDPL के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है।
2: अध्यक्ष महोदय, जिनकी परीक्षाओं को हम रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है।
0: सत्र के दौरान सभी विधायी कार्यों को पूरा करने के बाद CAG की रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। JPSC और JSSC समेत कई परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के विरोध में पिछले 18 दिनों से रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से आज भाजपा नेता दीपक प्रकाश मिलने धरना स्थल पर पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और CBI जांच की मांग दोहराई।
3: JPSC का, JSSC का जो परीक्षाएं हुई है केवल 14 नहीं 11, 12, 13 सब में बेचा गया है। खरीदार यहाँ के नहीं, झारखंड से बाहर के लोग भी हैं, इसीलिए CBI की जांच मांग कर रहे हैं। CID पर किसी को भरोसा नहीं है। राज्य बने हुए इतने लंबे समय के बाद 8 ही परीक्षाएं हुई JPSC का, उसमें विवाद हुआ है, इसलिए इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आज विधानसभा के घेराव का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल में रखा गया। छात्रों के आंदोलन के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर निशाना साधा।
4: झारखंड भाजपा चुनाव जो बंदी का आह्वान किया गया था, बीते रात 10 बजे रात का आह्वान किया गया था और झारखंड बंद हम लोगों ने बुलाया था। आज जिस प्रकार से झारखंड बंद सफल रहा, सारी दुकानें बंद रही, सभी जगह लोगों ने 8 घंटे के अंदर बंद को कराने के लिए हमारे कार्यकर्ता सड़कों को उतरे, आम जनता ने भरपूर सहयोग किया और विशेष करके जो हमारे मीडिया के मित्र हैं बंदी को दिखाने में चैनलों के माध्यम से चौकस निगाहें रखे हुए थे।
0: JSSC द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित कन्या अभियंता डिप्लोमा परीक्षा के पेपर लीक मामले में SIT ने परीक्षा संचालन एजेंसी विंसीस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक सह निदेशक अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पहले से 4 अभ्यर्थी, सिंडिकेट सदस्य और एजेंसी के सीनियर मैनेजर कृष्ण कुमार न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा परिसर में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि लोगों को पौधा लगाने के लिए जागरूक करना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधारोपण करते हुए कहा कि विधानसभा परिसर के अलावे सभी विधायकों को अपने आवास में भी एक एक पौधा लगाने के लिए दिए जाएंगे।
5: वन महोत्सव और पर्यावरण के लिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक। हर जगह हमें पर्यावरण संरक्षण पर काम करने की

0: सकता है। मैं वन विभाग और पर्यावरण जो भी विभाग है हमारे, इन सभी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ वृक्ष मत लगवाइए बल्कि पानी को भी धरती के अंदर जाने का कार्य योजना तैयार करें।
1: पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने आज लोकसभा में चियां की हवाई अड्डे के विकास और वहां से जल्द नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया और केंद्र से लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चियां की से उड़ान शुरू होने पर पर्यटन, स्वास्थ्य, उद्योग और आपदा प्रबंधन को बड़ा लाभ मिलेगा। झारखंड के प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा समय समय पर ऑडिट रिपोर्टों, राज्य की वित्तीय स्थिति और हालिया मामलों पर रिपोर्ट जारी की जाती है। इस कड़ी में आज झारखंड की प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा इंदु अग्रवाल ने राज्य के अलग अलग 6 जिलों के परिवहन विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, मनरेगा समेत कई विभागों से जुड़े सैंपल रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी।
2: जल जीवन मिशन जो है ये 2019 में लॉन्च हुआ था और इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण हाउसहोल्ड्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में और क्लीन वाटर जो है वो उपलब्ध कराना था 2024 तक। और इसमें एक टर्म यूज होती है FHTC, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। तो झारखंड में जो स्थिति थी वो ये थी कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब करीब 3.5 लाख हाउसहोल्ड जो है वो ऑलरेडी कवर्ड थे।
1: पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना सोननगर रेलखंड पर गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच रिवर्सिबल लाइन पर आज करीब दिन के 11 बजे कोयले से भरे एक मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना से डाउनलाइन पर परिचालन ठप हो गया है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने रांची समेत रामगढ़, खूंटी, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिलों के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघगर्जन, वज्रपात तथा वर्षा होने की संभावना जताई है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में शाम को वर्षा भी हुई। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है जो 12 से 23 अगस्त तक पुणे में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। टीम का चयन 1 अगस्त से चले विशेष प्रशिक्षण शिविर और खुली ट्रायल में चुने गए 30 खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया जिसमें गंगी बरला और सोनाली तिर्की गोलकीपर जबकि स्वीटी डुंगडुंग, सरोज मुंडरी और लियोनी हेमरोम फॉरवर्ड में शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में आज विधानसभा का मॉनसून सत्र रहा हंगामेदार। मुख्यमंत्री ने कहा TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की होगी जांच। जेपीएससी और जेएसएससी समेत कई परीक्षाओं में अनियमितता का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में भाजपा द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का रहा मिला जुला असर। विधानसभा परिसर में आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक करना है जरूरी। पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना सोननगर रेलखंड पर मालगाड़ी के 11 डब्बे बेपटरी, परिचालन घंटों प्रभावित। और पुणे में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा। 12 से 23 अगस्त तक टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी टीमें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा

0: संवाददाता।
1: कोडरमा जिले के तमाम कॉलेजों को हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हटाकर गिरिडीह के सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी से संबद्धता कराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर विभिन्न छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्र हित में संवेदना बरतने की अपील की है।
2: कोडरमा जिला के जो भी उच्च शैक्षणिक संस्थान उसको गिरिडीह से जोड़ा गया है तो उसको लेकर भी बच्चे आंदोलनरत है और वहां पर भी यूनिवर्सिटी बनेगी तो स्वाभाविक है कि वहां लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन कोडरमा हजारीबाग में था, आप हजारीबाग में रखें, यहाँ के बच्चों के हित के लिए जो हमारी बेटियां हैं वो हजारीबाग जाके यूनिवर्सिटी से अपना क्लास करके वो आती थी और उनकी उच्च शिक्षा वो प्राप्त करती थी। कहीं ना कहीं अगर ये गिरिडीह में होता है तो ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी, क्या आप चाहते हैं कि कोडरमा में बच्चियां नहीं पढ़े, कोडरमा की बच्चियों को सारी सुविधाएं ना मिले, उच्च शिक्षा वो ग्रहण ना करे? इसलिए
1: वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के मद्देनजर कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर को बढ़ावा देने के लिए अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावे वर्षा जल संचयन को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने वाले शहरी नागरिक को होल्डिंग टैक्स में छूट देने का भी प्रावधान है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता ने बताया कि
3: अर्बन एरियाज में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो घटते जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोगों की निर्भरता जो है अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल पे ही है। तो हमारा उद्देश्य कैच द रेन के अंतर्गत है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, लोगों को उसके लिए जागरूक करना और जो बरसात के मौसम में जो हमारा पानी बह के वेस्ट हो जाता है उसको हम लोग सुरक्षित रूप से हार्वेस्ट कर सके, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन या जो नेक्स्ट ईयर है जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो स्थायी रूप से बना रहा है।
1: परंपरागत खेती के साथ फूलों की खेती अपनाकर कोडरमा और आसपास के किसान समृद्ध हो रहे हैं। डोमचांच प्रखंड के कई किसानों ने परंपरागत खेती छोड़ अब फूलों की खेती शुरू कर दी है, जिससे उन्हें बेहतर आमदनी हो रही है। फूलों की खेती के लिए कृषि विभाग के अलावा उद्यान विभाग की ओर से भी प्रगतिशील किसानों को मदद मुहैया कराया जा रहा है। फूलों की खेती करने वाले डोमचांच के किसान सुमन लाल मेहता ने बताया कि
4: ख्याल है कि पारंपरिक खेती तो सब लोग कर रहे हैं, इसमें तो नुकसान बहुत ज्यादा, कभी फायदा कभी नुकसान हो जा रहा है। चले इससे हटकर हम दूसरा कुछ करते हैं तो हमने मन में ख्याल है कि चलो फूल की यदि देखे हैं तो फूल की खेती कर लेते हैं, अच्छा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो उसी में से हमने उनसे संपर्क किए तो वही फिर फॉर्म भर के दिए और वही हमको उद्यान विभाग से ही सारा चीज हुआ है। ये फूल का नस्ल यदि जरबेरा फूल है, ये बुके बनाने में काम आता है, डिमांड इसका बहुत बढ़िया है, जो अपना जो उपज जाए बिक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: आमतौर पर शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों के लिए फूल पहले कोडरमा में बंगाल से मंगाए जाते थे, लेकिन अब डोमचांच में उत्पादित फूल भी स्थानीय बाजारों में उपलब्ध है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
5: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में।

प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं रिपोर्टर पोस्ट के संपादक ज्ञान रंजन कुमार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही एक दिन पहले मंगलवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र प्रस्तावित था। हालांकि आज सरकार ने अपने सभी विधायी कार्यों को निपटा लिया, साथ ही सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसके अलावा राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने भी सरकार का पक्ष रखा। जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े छात्रों के ज्वलंत मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में सरकार की मंशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने को तैयार है, टीडीपीएल द्वारा ली गई परीक्षाओं की जांच भी कराने को तैयार है। परीक्षा में सुधार के लिए सरकार आईआईटी आईआईएम

जैसे संस्थानों की मदद लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पूरे राज्य को पता है। विपक्ष द्वारा छात्रों का चोला पहनकर आंदोलन को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष जबरदस्त हंगामा करता रहा। उन्होंने छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और छात्रों के संयम की सराहना की। कहा कि विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद जैसी संस्थाओं के पास सालों भर धारा 144 लागू रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले समय में बड़े संस्थानों से सलाह लेकर परीक्षाएं आयोजित कराएगी। उन्होंने कहा कि आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों से सलाह लेकर परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जिन परीक्षाओं को लेकर जांच की जरूरत है, उनकी जांच कराने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर जांच एजेंसियों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है और छात्रों के हित में काम किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भाजपा पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक भी हंगामा करने लगे। जेपीएससी, जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग भी दोहराने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्पीकर ने दोबारा सदन चलने का आग्रह विपक्ष से किया, लेकिन दोनों ही पक्ष के विधायक नहीं माने। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही दोबारा 2 बजे शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जेपीएससी और जेएसएससी तथा छात्रों की मांगों पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की कि सत्ता पक्ष के विधायक वेल में आ गए, हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने सीएजी की तीनों रिपोर्टों को सदन में पेश किया। रिपोर्ट पेश होते ही सदन में अव्यवस्था को देखते हुए स्पीकर ने कार्यवाही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और एक बार फिर दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे रिपोर्टर पोस्ट के संपादक ज्ञान रंजन।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो या...

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत काव्य पाठ। काव्य पाठ कर रहे राम प्रवेश पंडित।

एक सवैया जो भारत माता को समर्पित है। भारत देश विशेष सखे, जिस देश विराज रही सुर भारती। भारत देश विशेष सखे, जिस देश विराज रही सुर भारती। पुत

भारती पंडित राम प्रवेश कहे कवि गुंजत गायन पावन आरती। मेरी अगली रचना है माँ तुझे नमन है, जो राष्ट्र के साथ अमर शहीदों को समर्पित है।

है नमन उस जननी को जिनने जने हैं अमर लाल। काल जहां नतमस्तक होता प्रमुदित है वह महाकाल। जिसने समर में कर दिया, जिसने समर में कर दिया समर्पित निज यौवन है तुझे। हे वीर नमन है तुझे, रणधीर नमन है। ममता की गोद हुई

राखी का बंधन टूट गया, प्रिया से रूठ गए प्रियतम।

प्रति अपलक निहारती, तिरंगे में लिपटा तन है। माँ तुझे नमन है, माँ तुझे नमन है। जिसके तन मन में बसती माँ, बनाया माटी को चंदन है।

कांपे धरती, तेरा साहस चूमे आकाश। जहां साधना है संगीन की, जिसके हुंकार में सर्वनाश। कर अपना सर्वस्व समर्पण, गाता जनगण मन है।

तीर नमन है। काल चक्र को रौंद कर परम वीर चक्र पाने वाले, अशोक शौर्य महावीर चक्र ले, वंदे मातरम गाने वाले। धन्य सोफिया सिंह व्योमिका, धन्य सोफिका सिंह व्योमिका को भी अभिनंदन है। तुझे हे वीर नमन है, तुझे रणधीर नमन है, तुझे वे वीर नमन है, तुझे रणधीर नमन है। मेरी अगली रचना है तिरंगा गान, जो राष्ट्रध्वज तिरंगे को समर्पित है। जनगण मन का गान तिरंगा मेरा है।

जोश भरे तूफान तिरंगा मेरा है। अगर सजा के हाथ समर में जाना हो, अगर सजा के हाथ समर में जाना हो, बन जाता वरदान

भारत का अभिमान तिरंगा मेरा है, जनगण मन का गान तिरंगा मेरा है। मेरी अगली रचना क्रांतिवीर मंगल पांडे जी को समर्पित है, जिसने

पावन कोख से जन्मे सुरमा सेनानी, लेफ्टिनेंट को मार गिराया, लेफ्टिनेंट को मार गिराया, जो था कुटिल क्रूर निर्दय, बलिया वाले वीर बांकुरे मंगल पांडे की जय जय, बलिया वाले वीर बांकुरे मंगल पांडे की जय जय। शुरू हुई संपूर्ण बगावत,

की बलि वेदी पर पाए क्रांति वीर विजय, बलिया वाले वीर बाकुरे मंगल पांडे की जय जय। बैरकपुर की चिनगारी बन गई धधकती ज्वाला, जिसकी दाह

राष्ट्र हो गया क्रांतिमय, बलिया वाले वीर बांकुरे मंगल पांडे की जय जय। दिखा गए जो राह उसी पर भगत सुभाष।

0: दृश्य बड़ा था करुणामय, बलिया वाले वीर बांकुरे मंगल पांडे की जय जय। बलिया वाले वीर बांकुरे मंगल पांडे की जय जय, मंगल पांडे की जय जय। मेरी अगली रचना है जिसमें मैंने मानधनी महाराणा प्रताप जी को याद किया है और वर्तमान परिवेश में भारत में पुनः पधारने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है।
1: बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बीआर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के

सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉक्टर सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दीराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्नाद्रमुक के आईएस इनबादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने उड़ीसा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात उड़िया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी।

नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी

समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वें विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनिट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनिट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा

0: कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनी गंधा। लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी पूजा और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फना के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, संगीत से सजाया है जतिन ललित ने और शब्द रचना प्रसून जोशी का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग क्षमा करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अब आइए सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश।

0: समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
1: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
4: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
4: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं है, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
5: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिश ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आरई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। हुकूमत की जानिब से तलबा के मामले पर मुबाहसे की तैयारी की यकीन दहानी के बावजूद कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी जारी रखी। अपोजिशन के शोरगुल और हंगामा आरई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ऐवान की कार्रवाई में रखना अंदाजी पर दुख का इजहार किया। जनाब बिरला ने जोर देकर कहा कि ऐवान की कार्रवाई बहस मुबाहसे और ताउन के जरिए चलती है। लोकसभा ने अपोजिशन की हंगामा आरई के दौरान केरला तब्दीली नाम बिल 2026 और कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी। वहीं राज्यसभा ने भी ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 मंजूर कर लिया। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने इस बिल को गुज़िश्ता महीने मंजूर किया था। ये बिल दफा 3 के तहत वंदे मातरम को तहफ्फुज़ फराहम करता है और इसे कौमी तराने की तरह यकसां कानूनी दर्जा देता है। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन गया है। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों पर तलबा के एहतजाज पर बहस से बचने का ये कहते हुए इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इस मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट इहाते में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने तलबा के एहतजाज से मुतालिक तफसीली बहस के लिए कल एक पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह भी अपोजिशन की जानिब से उठाए गए मामलात पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने मुबैना तौर पर कहा कि वजीर दाखिला इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। भारत ने आज ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट और कभी ना अलग होने वाला हिस्सा है और इस सच्चाई को कोई तब्दील नहीं कर सकता। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात में भारत ने हमेशा बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि वो इन मामलात को सबसे संजीदा मानता है।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: जनाब जायसवाल ने मुतला किया कि भारत ने बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को बाहमी दौरे के साथ साथ नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच इजलास के लिए दावतनामा भेजा है। उन्होंने मजीद कहा कि कल भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के वजीर आजम से मुलाकात की और तरफेन ने बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक की अमरीकी एजेंसी नासा ने आर्टेमिस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के तौर पर खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। इस मुआहदे के तहत भारत और अमरीका ओपन साइंसी डेटा साझा करने पर ताउन से मुतालिक बातचीत को आगे बढ़ाने पर रजामंद हो गए हैं। भारत ने 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के सदर दफ्तर में भारत अमेरिका सिविल खलाई मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की नवी मीटिंग की मेजबानी की। इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और भारत में अमेरिकी सफीर सर्जियो गोर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान भारत और अमरीका के दरमियान ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट पहल के तहत सिविल और तजारती खलाई इश्तराक में पेशरफ्त हुई। फरीकैन ने गुज़श्ता साल नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR के मुश्तरका तौर पर कामयाब लॉन्च के बाद बढ़ते तावुन पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने साइंस और मुस्तकबिल में खला में इंसान की परवाज से मुतालिक टेक्नोलॉजी के तावुन पर भी बातचीत की। फरीकैन ने बाहरी खला की सरगर्मियों की तवील मुद्दती पायदारी से मुतालिक बाहरी खला के पुरअमन इस्तेमाल की अक़वामे मुत्तहिदा

सहायता की कमेटी सीओपी यूओएस के रहनुमा खतूत पर आगे बढ़ने की अपनी अहदबस्तगी को दोहराया। इसके अलावा फरीकैन ने कमेटी की असर पजीरी की यकीन दहानी के लिए जारी कसीर जहती कोशिशों का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों पर

0: भी से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टिटवाल के मकाम पर आज अजीमुशान तिरंगा रैली मुनक्कित की गई। रैली की खसूसियत 1200 मीटर लंबा कौमी परचम रही। रैली में स्कूली तलबा, असातिज़ा, साबिक फौजियों, सिविल और पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी अरकान और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। शुरका ने तिरंगे के साथ हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए मार्च किया। आज बीजेपी की जानिब से किए गए झारखंड बंद का रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी के मामूलात पर असर पड़ा। पार्टी के वर्कर कल असेंबली मार्च के दौरान तलबा पर हुए मुबैना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तलबा के एहतजाज को 18 दिन हो गए हैं और एहतजाज कर रहे तलबा जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात को मनसूख करने, सीबीआई तहकीकात और भर्ती के अमल में इस्लाहात की अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा ताकि सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को आगाह किया जा सके। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों पर रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी इकतदार की जानिब से मुबैना तौर पर ताकत के इस्तेमाल की जानिब तवज्जो मबजूल कराने पर जोर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को यौम सयाह के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जिस दिन पाकिस्तान का यौम आजादी भी है। एहतजाज का सिलसिला 2 महीनों से जारी है और इसका कोई हल दिखाई नहीं देता। मुजाहिरीन ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर 60 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया है और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गोवा और शिमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कल दोपहर से शाम तक कौमी राजधानी में कुछ मकामात पर बहुत हल्की बारिश के साथ साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। शदीद बारिश की वजह से चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब रियासत की 2 कौमी शाहराहों और 204 दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 24 घंटे के दौरान 5 अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके पेशे नजर इंतजामिया ने लोगों से दरियाओं से दूर रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड्स, शहरियत और पनाहगुजीनी समेत इमिग्रेशन से मुतालिक मुतादिद फवायद हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने के अमल को लाजमी बनाएगा। इस इकदाम का मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना और ऑपरेशनल अखराजात को कम करना है। अमेरिका की शहरियत और इमिग्रेशन खिदमत से मुतालिक महकमे ने कहा है कि एक हुक्म के मुताबिक ऐसे फॉर्म्स जो कम से कम 180 दिन से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए दस्तियाब हैं, उन्हें ऑनलाइन जमा कराना जरूरी होगा। टेनिस में कनाडा ओपन 2026 में आज साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांटेक खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। 6 मरतबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। जुमेरात के रोज अब सेमीफाइनल में श्वांटेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वें दर्जे की खिलाड़ी एलिना स्वीटोलिना से होगा। स्वीटोलिना एक दीगर क्वार्टर फाइनल में रूस की इकातेरिना अलेक्सेंद्रोवा को 3-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के सिंगल्स में आज क्वार्टर फाइनल में इटली के 19वें दर्जे के लुचानो दुर्देरी का मुकाबला अमेरिका के ब्रैंडन नकाशीमा से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल निजाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्राइब्यूनल कमीशन की तजवीज पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदाद बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए NCDC बिल को भी मंजूरी दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए

0: सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टेमिस माहदे के तहत अपने अहम मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदद किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वह फख्र के साथ यौम आजादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द प्रोग्राम मनी टॉक नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन की प्रोविजन।
3: से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज हम सुनेंगे अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित कार्यक्रम, लेकिन बस कुछ ही देर में।
4: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
5: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
4: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
5: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा। देखिए मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनील शेट्टी 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक मैंगलोर के मुल्की तालुका में जन्मे। तुलु भाषी बंट परिवार के सदस्य सुनील शेट्टी अंक शास्त्र में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी के अनुसार अपने नाम की स्पेलिंग्स में भी फेर बदल किया है।

आग पानी और भाई जी से कभी खेलना नहीं। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है।

0: जिया।
1: 1992 में फिल्म बलवान से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी को जब दर्शकों ने देखा तो उनमें सभी को एक ही मैन नजर आया।

जैसे जैसे सुनील फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए, वैसे वैसे उनके अभिनय में भी निखार आता गया। इसी से उत्साहित होकर सुनील ने कॉमेडी रोल किया अपनी दोहरी भूमिका वाली फिल्म गोपी किशन में। सुनील शेट्टी के दमदार अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा। उनके नेगेटिव रोल के लिए फिल्म

इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया 2001 में, और 2009 में सुनील शेट्टी को साउथ एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म रेड अलर्ट के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित

सुनील शेट्टी ने मुंबई में होटल व्यवसाय भी शुरू किया है और 2003 में फिल्म खेल से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने क्रिकेटर अजय जडेजा को बतौर हीरो चांस दिया और खुद बने विलेन।

0: तो दोस्तों ये था अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अमरकांत के साथ, प्रस्तुति सहयोग पी के ए नायर, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर। अब अमरकांत को दीजिए इजाजत, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम।

0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
2: नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
3: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
4: नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान जी सी चंद्रशेखर जी।
5: प्रश्न संख्या 241, क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग, ग्रिड संपर्क पारेषण ट्रांसमिशन अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
6: First supplementary, Dr. Lakshmikant Padmai ji. Then first supplementary, G.C. Chandrasekhar ji. You take your seat, I am calling him.
7: Sir, Mike.
6: You take your seat, I am calling him.
7: Mike.
6: First supplementary, Shriman G.C. Chandrasekhar ji.
7: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
6: I am allowing you. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji. I
8: want to know from you, Mr. कि और सोलर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है।
5: श्रीपद यशो नाइक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
9: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक CUF उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अधिक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो स्कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे ऑफ इसे जुड़ी कई कंस्ट्रेंसेस सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेजल फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
10: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी।
11: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस द रिन्यूएबल एनर्जी

0: project, other than the wind project, how much it is affected? Is there any losses? If it is there, has it been measured? And I would like to know how every state is affected by drought and cyclone and hurricane and floods and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
1: Honorable Minister.
2: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। तो ये जो प्रश्न है आपके मान्यता है और इसलिए इससे संबंधित नहीं।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ

0: संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की सभा। प्रातःकालीन प्रसारण में सुबह 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।